सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में

0: असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेज़बानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता VD सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। विचार मंथन में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन, मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्य।

समूह स्वरों में रिपत सरोज का लिखा ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना, और अब आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में उन्हीं का लिखा ये भजन।

आशा भोसले के स्वर में माया गोविंद की लिखी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं विपिन सचदेवा का गाया, बेदम जलाल आबादी का लिखा ये भक्ति गीत।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन। आलेख पंडित भगवती धर वाजपेयी का है और वाचक हैं माधवी एंडे।
1: हम प्रतिवर्ष अपने दिवंगत नेताओं और महापुरुषों का जन्मदिन अथवा उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और उनके प्रति आदरांजलि अर्पित करने के साथ ये कथन दोहराते हैं कि इन श्रद्धेय व्यक्तियों ने जो मार्ग बताया वो आज भी प्रासंगिक और अनुकरणीय है। पूर्वजों ने ऐसा क्या किया कि हमें आज भी उनके पद चिन्हों और आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए? विचारणीय है कि क्या समय बदला नहीं है? पूर्व की परिस्थितियों और वर्तमान में कोई अंतर नहीं है। क्या समय के साथ ही लोगों में बदलाव नहीं हो रहा है? प्रकृति के नियमानुसार समय और परिस्थितियों में परिवर्तन होता ही है और उनके कारण लोगों की वृत्तियों में भी अंतर दिखाई देता है। विज्ञान के कारण जो नए नए आविष्कार आए दिन हो रहे हैं, उन्होंने मानव समाज की जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया है। अब दायरे बढ़ गए हैं, परिवार का स्वरूप तो जागतिक हो गया है। ऐसी स्थिति में पूर्वजों द्वारा दिखाया गया मार्ग क्या आज भी प्रासंगिक हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही हां में है। जीवन में कुछ बातें शाश्वत हैं। जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, वे उन्हें किसी थाली में रखी हुई नहीं मिली। उन्होंने अपने स्वार्थों की बलि चढ़ाई, अवरोधों से हताश नहीं हुए और परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ा। चूंकि उनके संकल्प में दृढ़ता थी, अतः वे अपने प्रयत्नों में सफल होते गए। उनमें अहंकार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी उपलब्धियों को समाज को समर्पित किया। उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि उन्हें बदले में समाज से कुछ मिलेगा। जिस प्रकार भगवान के सम्मुख होने पर उनके भक्त केवल ईश भक्ति की ही याचना करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन समाज की सेवा को ही नारायण की सेवा मानते हैं। वे सदा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि समाज ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, इसलिए उन्हें इसे समाज को ब्याज सहित लौटाना भी चाहिए। साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करने का मार्ग खोज ही लेता है। उसके सामने जैसी परिस्थिति होती है, वो उसी के अनुरूप अपनी रणनीति अपनाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब गोरों के हाथों अपमानित हुए, तो उन्होंने वहां की परिस्थितियों को अपने लिए चुनौती माना और उनसे संघर्ष के नए मार्ग अपनाए। इसीलिए वे आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। जीवन में व्यक्ति को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। अच्छाइयों के बीच तो वो प्रसन्नता के साथ रह लेता है, लेकिन बुराइयों का जब उसे सामना करना पड़ता है, तब उसके साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। यदि सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का ही मुंह ताका जाएगा, तो बुराइयां नहीं मिटेंगी। शारदा एक्ट अर्थात बाल विवाह विरोधी कानून के होते हुए भी यदि बाल विवाह हो रहे हैं, तो इसलिए कि समाज उस ओर से उदासीन है। हमारी उदासीनता बुराइयों को बढ़ावा ही देती है। बुराइयों को रोकने के लिए कानून है, लेकिन समाज के सक्रिय सहयोग के बिना कानूनों की सफलता संदिग्ध ही रहती है। समाज में जब कुछ व्यक्ति साहस करके आगे बढ़ते हैं, तो अन्य लोग भी उनके पीछे चलने को तैयार होते हैं। स्वार्थ का त्याग और संकल्प की दृढ़ता के द्वारा ही कठिनाइयों को पार किया जाता है। महापुरुषों के जीवन से यही तो प्रेरणा।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख पंडित भगवती धर वाजपेयी का था और वाचक थीं माधवी एंडे, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह के।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर थे मिताली और भूपेंद्र सिंह के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समय की, विषय है मछलियों के रोग।
1: मछरियां पारवे वाले भैया रहो हो ना फिर जो हमारे किसान भैया रहे मछरियां पारत हैं, उन्हों हम एक जानकारी दे रहे हैं कि मछरियां पालवे की टेम पे उनमें अगर कोनो रोग व्याधि हो जाते हैं तो उनको प्रबंधन कैसे करने हैं। मछलियों में बीमारी दो कारण से होती है, एक तो होते पर्यावरणीय कारण और दूसरो होते संक्रमण। तो भैया जो पर्यावरणीय असंतुलन से उत्पन्न रोग होते हैं वे हम आप बताऊ थे। पहलो रोग है, पहलो है भज्जा।

0: करो सनबर्न रोग, जो रोग मछलियों में ज़्यादा तापमान की कारण से होते है, जिससे मछलियों के जो बाहरी जो उनकी चमड़ी होते है, त्वचा होते है, बाका होते है, झुलस जात बिल्कुल, और मछलियाँ भोजन पानी छोड़ देती हैं और फिर उनको गमन बीजन होते असमान हो जाते, और जो रोग प्राय का होते गर्मी के मौसम में ज़्यादा होते। और उपचारी रोग को ऐसे करने हैं कि अपने तालाब में या फिर टैंक में जहाँ भी मछलियाँ पाली हो सो उन्हों छाया देवी के लाने जाल या फिर जो नेट आउट नहीं है उको उपयोग करें, और पानी में जो फ्लोटिंग प्लांट कहाउत हैं जैसे वाटर लिली होती नहीं है उन्हों लगाओ, और पानी को साफ और ठंडो राखवे के लाने बोरवेल को पानी नोजल के सहारे मिलत रहे सो उको पानी भी अपन हो बदलत रहने हैं। सनबर्न से प्रभावित मछलियों को पोटेशियम पर मैग्नेट 0.05% घोल या नमक के 3-5% में 2-3 मिनट लो रखें। कोनो मछलियन को एक हजारो हाइपोक्सिया कबम कबम का होते जलीय खरपतवार होते ना फिर जो जलीय वनस्पति होते कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होते नहीं पानी में वह कम हो जात जी के कारण भी भारी संख्या में मछलियों को नुकसान होते। इमें कहो थे कि मछलियां मुंह खोल के पानी की ऊपरी सतह पे आउन लगती हैं और मछलियों की मौत भी होने लगा थे कबम कबम जब ऑक्सीजन की मात्रा 9 ppm से ऊपर पहुंच जावे तो मछलियों में काउत के गिल के अंदर जो बुलबुले होते नहीं भी बनन लगा थे जीखो गैस बबल रोक के थे। सो ई किलाने का करने भजारो के तालाब में ऑक्सीजन बढ़ावे के लाने एयरेटर या फिर पंप को उपयोग करने हैं जो जैविक कचरा होते ऊने जमा हो पावे। और दूसरा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो युक्त उर्वरक होते हैं उनको अधिक उपयोग न करो भजारो, और हाइड्रोजन परॉक्साइड जैसे ऑक्सीजन बढ़ावे वाले रसायनों का उपयोग अपन करने हैं। अब है भजारो संक्रमण संबंधी जो रोग होते हैं, पहले तो है एक लाल घाव रोग। अब मछलियों के शरीर में कहा होते भजारो के लाल लाल से ऊपर घाव हो जाते हैं, तो ई रोग को उपचार ऐसे करने हैं 500 से लेकर 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2-3 किस्त में तालाब में चूना को छिड़काव करने हैं। ई रोग में सिफेक्स को उपयोग भी करो जा सकते है। अब एक रोग है मछलियों में जू रोग, जो की मछलियों के ऊपरी भाग पे चिपक जाते हैं और अपने जो चूसक होते हैं उनके द्वारा मछलियों से पोषण प्राप्त कर लेते जी के कारण से मछलियों में खून बहन लगा थे और पंख का होते उनके गिरन लगा और खुजली के मारे मछलियां का होती कठोर सतह पे जाके अपने शरीर हो रगड़न लगती हैं। और उपचारी हो ऐसा करने हैं के एसिटिक एसिड और 2% नमक के घोल में इन्हें तालाबों में 25 ppm फार्मेलिन को इस्तेमाल करने हैं। मछलियों को 500 ppm पोटेशियम परमैंगनेट घोल में 5 मिनट के लाने रखने हैं। ड्रॉपसी मछलियों में जो एक गंभीर रोग है। अब मछलियों के शरीर में पानी जमा होने के कारण उनको शरीर फूल जात और आंखें असामान्य रूप से बाहर की तरफ ही निकरसियां होती हैं। शरीर पे लाल घाव और धब्बा से दिखान लगाते हैं। मछलियों के भोजन में का करने भजारों के उचित पोषक तत्वों को शामिल करने हैं। पानी के सवाई कारकों की गुणवत्ता बनाए रखें और तलों में हर 15 दिन में 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से चूना को उपयोग करें। एक रोग है कॉटन माउथ रोग, शरीर में फंगस रुई घाई सफेद दिखान लगा थे इनके। अब उपचार कैसे करने हैं, शरीर भार के क्लोरोमाइसिटिन है सो 5-10 ppm की दर से प्रयोग करने हैं और ऑक्सी ट्रेटासाइक्लिन 75 mg प्रति अनुसार देवे। और एक रोग है विब्रियोसिस, उनको शरीर करिया पड़ जाते है सो ई रोग से बचाव के लाने मछलियों को उपचार जो करने हैं के ऑक्सी ट्रेटासाइक्लिन और सल्फोनमाइड 8-12 g प्रति किलोग्राम भोजन की दर से देने हैं, 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से चूना को छिड़काव करने हैं। अब एक रोग और है भैया रो सेप्रोलेगिनोसिस, मछलियों के शरीर में घाव होने लगाते हैं जो फपूंद होते हैं जे उनमें चिपक जाती हैं। मछलियों की त्वचा पे सफेद जालीदार घाव बन जाते हैं और मछलियों के जबड़ा फूल जाते हैं और फिन के जोड़ पे खून जमा हो जाता है। और उपचार के लाने भैया रो 2-3% नमक को घोल और 1:1000 पोटास के घोल में या फिर 1:2000 कैल्शियम सल्फेट के घोल में 5-6 मिनट डुबोवे से लाभ होते है मछलियों को। तो मछली पालक भैयारों को अपनी मछलियों में लगने वाले रोगों को इस प्रकार से प्रबंधन करने हैं।
1: मछलियों के रोग कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। अभी 7:20 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, जिसमें चर्चा और फिल्म संगीत के अलावा आपको सुनाएंगे श्री कुंदन सिंह परिहार की लिखी कहानी अपने गांव का मनुष्य। 8:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। 9 होता है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रस्तार। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं हेमराज चढ़ार और हरिराम भट्ट के गाए मुंदेली लोकगीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। से सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

0: 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, जो कि आप सुनेंगे दिन में 3 बजे यानी सभा के समापन तक। शाम 5:02 पर दूसरी सभा में कार्यक्रम युववाणी हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। गोपाल यादव के गाए बुंदेली लोकगीत सुने जा सकते हैं शाम 6:30 पर, शाम 6:40 पर आजकल और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल के ये दोनों कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीजों के भंडारण के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर सुब्रता शर्मा। रात 8:00 सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 8:30 से आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन। और रात 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी जबलपुर है। वक्त हो रहा है संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रांतर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम

0: अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादं आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। SDOP और SDM समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। AI से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई, जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में BJP का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
2: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर जगह मिल जाए तो वहाँ फेजेज में वो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज। पहले फेज में वो उस जगह पर कीमोथेरेपी से शुरू करेंगे। मुझे विशेषकर चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता है और बहनें बताती हैं तो आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून को। तो टाटा मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि 3 दिन रहने।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वागदेवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
5: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर सेसर रोटावेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे

0: वर्ष में 12 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
1: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
2: देवास के टोक कला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफ़ी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है। बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपए प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20 हुए हैं और अब 21 हो चुके हैं। सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, या यूं कह लें कि जिस तरह की परिस्थितियों में कोई व्यक्ति रहता है, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि उसके जीवन में संघर्ष ना हो, तनाव ना हो, दबाव ना हो। और इन परिस्थितियों में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जहाँ तक सेहत संबंधी चुनौतियों की बात है, तो मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि हर इस चुनौती पर विज्ञान ने और वैज्ञानिकों ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है, और उस चुनौती से दुनिया भर के वैज्ञानिक जूझ रहे हैं। उस संबंध में हम बात करेंगे। उससे पहले क्यों ना माहौल को थोड़ा सा हल्का बना लें।

दोस्तों, तमाम साफ सफाई और सुरक्षा के बावजूद हम रोज़मर्रा के जीवन में ना जाने कितने बार संक्रमण के संपर्क में आते हैं। उसके बावजूद हम आमतौर पर बीमार नहीं पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली होती है, शरीर की अपनी सेना होती है, जिसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स सैनिक की भूमिका निभाते हैं और बाहरी संक्रमण से लड़ते हैं। और आम तौर पर हमारा शरीर इस लड़ाई में जीत हासिल करता है और हम संक्रमण से बच जाते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें शरीर की यही रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है। यही परिस्थिति एड्स कहलाती है। वास्तव में एड्स अपने आप में कोई बीमारी ना होकर बीमारियों के लिए अनुकूल परिस्थिति है, और उसके बाद शरीर विभिन्न बीमारियों का शिकार होने लगता है और दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एचआईवी पॉजिटिव होने से। लेकिन एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब ये भी नहीं कि व्यक्ति एड्स का शिकार हो गया। ये सच है कि पॉजिटिव व्यक्ति यानी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स होगा, लेकिन इस अवधि को संतुलित खानपान और चिकित्सकों द्वारा बताई गई सावधानियां और दवाओं के सेवन से लंबा किया जा सकता है। एड्स को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सावधानी ही सबसे अच्छा इलाज है। सावधानी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि एड्स किस तरह से फैलता है। पहला, संक्रमित सुई या इंजेक्शन से। दूसरा, दूषित रक्त के चढ़ाए जाने से। और सबसे महत्वपूर्ण कारण, असुरक्षित यौन संबंधों से। और एक और कारण है, संक्रमित माँ से बच्चे को। तो इन कारणों को लेकर जागरूक रहें। और जहाँ तक चिकित्सा विज्ञान की बात है तो एड्स के इलाज को लेकर वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। और अभी वैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी तलाश है, एक ऐसा टीका बनाने की जिसको लगाने के बाद हम सारे लोग एड्स को लेकर सुरक्षित हो जाएं। टीके की जो अवधारणा है वो बस हमारी संस्कृति में पहले से ही है कि लोहे को लोहा काटता है, और इसी सिद्धांत पर टीके बनाए जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, हम कह नहीं सकते। और इसी वजह से इस लड़ाई या इस उद्देश्य को लेकर दुनिया के जो सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसमें भ्रमित होने की बात बिल्कुल नहीं है। 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस, उसके बारे में हम सभी जानते हैं, एड्स को लेकर जागरूकता वाला दिन। लेकिन 18 मई विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, इसका मतलब ये भी नहीं कि एड्स का टीका खोज लिया गया है, बिल्कुल नहीं। उस दिशा में दुनिया के सारे वैज्ञानिक अभी भी कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं कामयाबी कब मिलेगी और वो सुबह कब आएगी।

दोस्तों, इस गाने की भी अपनी एक रोचक कहानी है। आप सभी संगीत के श्रोता हैं और जानकार भी हैं, और इस बात को बेहतर जानते होंगे कि हर गाने का एक मुखड़ा होता है जो कि आमतौर पर दो पंक्तियों का होता है, लेकिन इस गाने में सिर्फ एक पंक्ति का मुखड़ा है, वो सुबह कभी तो आएगी। और ये चुनौती थी खयाम साहब के सामने, और इस चुनौती को उन्होंने जिस तरह से लिया और उसके बाद जो परिणाम मिला वो हम सबके सामने है। और ये भी एक हैरत की बात कह लें या आश्चर्य की बात कह लें कि ऐसे चुनौतीपूर्ण गाने जो दो खास तौर पर चिन्हित किए जाते हैं, दोनों साहिर साहब की कलम से निकले हैं। एक तो यही गाना और दूसरा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, उसमें भी एक ही पंक्ति का मुखड़ा है।

0: नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: और अब वक्त है कहानी सुनने का। इस कहानी का शीर्षक है अपने गांव का मनुष्य। कहानीकार हैं श्री कुंदन सिंह परिहार।
2: वीरेंद्र जी ऊंचे प्रशासनिक पद से रिटायर हुए, वे रोबदाव वाले अफसर के रूप में विख्यात रहे। चाल ढाल और बोली में हमेशा कड़क रहे। उनके ऑफिस के आसपास कभी किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद भी उनका स्वभाव वैसा ही बना रहा। घर के लोग उनसे उलझने से बचते रहते हैं। वीरेंद्र जी हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना पसंद करते हैं। सवेरे स्मार्ट वस्त्रों और जूतों में पत्नी के साथ सैर को निकल जाते हैं। घूमकर आराम से घर लौटते हैं। कहीं अच्छा लगता है तो बैठ जाते हैं। उनका नित्य का क्रम बंधा हुआ है, उसमें व्यतिक्रम उन्हें पसंद नहीं। अपने जीवन और अपनी ज़रूरतों के बारे में वीरेंद्र जी सख्त हैं। अपने कपड़ों, खाने पीने और दूसरी ज़रूरतों में फेरबदल उन्हें पसंद नहीं। वे उन पिताओं में से नहीं हैं जो अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए अपनी ज़रूरतों को होम कर देते हैं। इस मामले में वे ज़्यादा भावुक नहीं होते। वीरेंद्र जी के साथ उनका छोटा बेटा और बहू रहते हैं। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में और बेटी बेंगलोर में अपने पति के साथ है। छोटा बेटा और उसकी पत्नी शहर में ही जॉब करते हैं। वीरेंद्र जी ने बंगला बड़ा बनाया है, इसलिए जगह की कमी नहीं है। वीरेंद्र जी का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया में पैसे से ज़्यादा भरोसेमंद कोई चीज़ नहीं है। उन्हें किसी मनुष्य में भरोसा नहीं है, अपनी संतानों पर भी नहीं। उनकी सोच है कि आदमी के लिए अंततः पैसा ही काम आता है, इसलिए भावुकता में उसे बांटकर खाली हाथ नहीं हो जाना चाहिए। मित्रों के बीच में वे जब भी बैठते हैं तब भी यही दोहराते हैं कि पैसे से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता, इसलिए उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। वे अपने पैसे का हिसाब किताब, अपने ATM कार्ड, अपनी मियादी जमा की रसीदें अपने पास ही रखते हैं। अपनी संपत्ति के बारे में खुद ही निर्णय लेते हैं। बेटे बहू को कभी ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी नहीं देते। पैसे निकालने, जमा करने का काम खुद ही करते हैं। उनके स्वभाव को जानते हुए बेटा बहू भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। वे अक्सर एक बड़े उद्योगपति का किस्सा सुनाते हैं जिसने भावुकता में अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी थी और जो फिर अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर हुआ था। बैंक और ATM वीरेंद्र जी के घर के पास ही हैं। कई बार पत्नी के साथ टहलते हुए चले जाते हैं। बेटे और बहू से पैसा नहीं निकलवाते। अपने पैसों के बारे में भर तक गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। उनकी सोच है कि दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। उनके विचार से निस्वार्थ सेवा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई उनके लिए कुछ करता है तो वे तुरंत उसका मूल्य चुकाने की कोशिश करते हैं। एक बार उनके ऑफिस का चपरासी रमेश उनके घर अपने गांव से लाई मटर दे गया था। वीरेंद्र जी ने तुरंत मटर का मूल्य रमेश के हाथों में ज़बरदस्ती खोंस दिया था। उनके इस आचरण से रमेश का मुँह छोटा हो गया था। अपनी श्रद्धा का मूल्यांकन उसे दुखी कर गया था, लेकिन वीरेंद्र जी ने उसे उचित समझा था। वीरेंद्र जी घूमने घामने के शौकीन हैं। देश के ज़्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों को देख चुके हैं। पत्नी के साथ सिंगापुर और जापान भी हो आए हैं। उनका सोचना है कि जब तक हाथ पांव चलते हैं दुनिया का लुत्फ ले लेना चाहिए। साल में पत्नी के साथ कहीं ना कहीं का चक्कर लगा आते हैं। वे मोहल्ले के लॉफ्टर क्लब के भी सदस्य बन गए हैं। पार्क में 10-15 बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर पहले झूठी और फिर एक दूसरे की हंसी देखकर सच्ची हंसी हंस लेते हैं। आसपास की इमारतों की

महिलाएं इनकी झूठी सच्ची हंसी देखकर आनंदित हो लेती हैं। ऐसे ही वीरेंद्र जी के रिटायरमेंट के 3-4 साल गुजर गए। स्वास्थ्य के मामले में वे हमेशा फिट रहते थे और इस बात का उन्हें गर्व भी रहा था। नौकरी

0: घबराई, फोन करके बेटे को बुलाया। वह कार लेकर आया और दोनों को घर ले गया। वीरेंद्र जी को पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर में तबीयत कुछ संभली तो पास ही के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की, फिर बोला, भर्ती करा दीजिए, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आराम ज़रूरी है। वीरेंद्र जी अस्पताल में भर्ती हो गए। पहली बार अस्पताल की ज़िंदगी का अनुभव हुआ। वहाँ के कर्मचारियों और डॉक्टरों को तटस्थ और मशीनी ढंग से काम करते देखा, देखा कि कैसे यहाँ आकर जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क धूमिल हो जाता है। वीरेंद्र जी को वहाँ 24 घंटे में बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। 24 घंटे में वीरेंद्र जी के अनगिनत टेस्ट हो गए। कई विशेषज्ञ उनकी जांच पड़ताल कर गए। दूसरे दिन शाम को अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, अभी कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आई, दवाएं लिख दी हैं, एक हफ्ते बाद फिर बताइए। दो दिन में ही करीब 8,000 का बिल बन गया। वीरेंद्र जी ने बेटे को अपना ATM कार्ड दिया, कहा, निकाल कर जमा कर देना। बेटा बोला, मैंने जमा कर दिया है, अभी आप इसे रखिए। वीरेंद्र जी ने सकुचते हुए कार्ड रख लिया। घर आकर वीरेंद्र जी ने फिर कार्ड बेटे की तरफ बढ़ाया। बेटे ने कहा, आप थोड़ा ठीक हो जाइए, फिर देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से बड़े बेटे का फ़ोन आया, कहा, पैसे की दिक्कत हो तो बताएं, भेज दूंगा। बेटी के फ़ोन हर 4-6 घंटे में आते रहे, कभी कैफियत लेने के लिए तो कभी हिदायत देने के लिए। 3-4 दिन के आराम के बाद वीरेंद्र जी ने बाहर निकलने की सोची। सवेरे पत्नी को लेकर घूमने निकले, लेकिन धीरे धीरे अपने को टटोलते हुए चले। मन में कहीं डर बैठ गया था, आत्मविश्वास दरक गया था। लौटे तो पलंग पर लेटे बड़ी देर तक सोचते रहे। आदमी और परिवार के बारे में उनकी मान्यताएं कमज़ोर पड़ रही थी। थोड़ी देर में बेटे को बुलाया, बोले, शाम को मेरे पास बैठना, अपने बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट वगैरह के बारे में तुम्हें जानकारी दे दूंगा, तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब फिर से बिगड़ जाए।
1: अपने गांव का मनुष्य श्री कुंदन सिंह परिहार की लिखी ये कहानी अभी आपने सुनी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बढ़ती उम्र के साथ कुछ समस्याएं बड़ी सामान्य होती हैं और उसमें से एक समस्या है चीज़ों को भूलने की। व्यक्ति अलमारी के पास जाता है, अलमारी खोलता है और फिर भूल जाता है कि अलमारी क्यों खोली थी, किस काम के लिए यहाँ आया था या आई थी। ये बहुत सामान्य बात है और इसे बहुत ज़्यादा इससे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अलमारी की ही बात कर लें कि हम सबकी अलमारियों में हमारे पसंदीदा कपड़े होते हैं और हर बार आम तौर पर दिवाली पर या उसके अलावा भी ऐसे कपड़े जो अब हमारे उपयोग के नहीं रहे हम अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं। महिलाएं साड़ियां घर की कामवाली को दे देती हैं या पुरुष भी अपने कपड़े कामवाली को दे देते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक साड़ी, एक शर्ट या एक पैंट ऐसा हो तो गया है बहुत पुराना, लेकिन आपने उसे किसी को दिया नहीं है। वो इसलिए कि उसके साथ हो सकता है एक मीठी सी स्मृति जुड़ी हो। शादी के बाद आपकी पत्नी ने पहली बार आपको कोई शर्ट गिफ्ट की हो या आपने अपनी पत्नी को कोई साड़ी गिफ्ट की हो, तो वो ये मानकर चलिए वो ताज़िंदगी सुरक्षित रहने वाली चीज़ें होती हैं। शादी के कपड़े आम तौर पर लोग सुरक्षित रखते हैं क्योंकि उसके साथ एक मीठी सी स्मृति जुड़ी है, और अगर फैसला गलत हो गया तो स्मृति कड़वी भी हो जाती है। मेरा आशय यह है कि इंसान की जो फितरत होती है वो अपनी स्मृतियों को जमा करके रखता है, और एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर स्मृति और इतिहास को संजो के रखा जाता है और उस जगह को हम संग्रहालय बोलते हैं। जबलपुर में भी एक संग्रहालय है, रानी दुर्गावती कला वेदिका के प्रांगण में। इसके अलावा बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें, पुरानी कलाकृतियाँ और पुरानी स्मृतियों को संजो के रखा जाता है। वहाँ पर जाके हम इतिहास को साक्षी

बिल्कुल दोस्तों, यादें या स्मृतियाँ अकेलेपन में हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। और जहाँ तक यादें जमा करने की बात है, महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे होती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वो संग्रहित करके रखती हैं जिसके बारे में जान के हमें हैरत होती है। आमतौर पर सिंदूर की डिब्बी, जो पहली बार जो सिंदूर लगाया गया था, लिपस्टिक और पतियों द्वारा दिए गए छोटे छोटे उपहार महिलाएँ बहुत संजो के रखती हैं। इस मामले में सारी महिलाएँ हम सबके सम्मान और सैल्यूट की पात्र हैं। अब एक छोटा सा गाना और सुना जा सकता है।

0: और अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार। मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय

0: संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से

0: विथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3rd और चेन्नई 6th स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।

0: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people.

जल थी फिल्म का ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और एस डी बर्मन का संगीत।

अगला गीत फिल्म गोदान से, शब्द अनजान के संगीत पंडित रविशंकर का, आवाजें गीता दत्त, महेंद्र कपूर और साथियों की।

महेंद्र कपूर, एस के महान, पामिला चोपड़ा और साथियों का गाया काला पत्थर फिल्म का ये गीत आपने सुना। बोल साहिर के थे और संगीत राजेश रोशन का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। प्रदेश में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया समझ सकेंगे। धार की भोजशाला गर्भगृह में कल मंत्रोच्चार और हवन के बीच मां वाग्देवी की प्रतिकृति स्थापित की गई। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द किया जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। और आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं हेमराज चढ़ार और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक रसधार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हेमराज चढ़ार और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। और इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं हरिराम भट्ट और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: हरिराम भट्ट के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रसधार कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 हुए हैं। उर्दू कार्यक्रम आईना कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से हमा वक्त खताएं होती रहती हैं, कुछ नासमझी में और कुछ खताएं जानबूझकर। लेकिन इस्लाम में खता से ज्यादा अहमियत इस बात पर दी गई है कि इंसान अपनी गलती पर अड़ा न रहे बल्कि उस पर शर्मिंदा होकर माफी मांगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। दोस्तों, तौबा का मतलब है खता पर शर्मिंदा होना, उसे छोड़ देना और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करना। क्योंकि अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि तमाम बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करने वाले हैं। सामीन, इस हदीस के मुताबिक खताकार तो सब हैं, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो अपनी गलती का एहसास करते हैं, माफी मांगते हैं और अपने तर्ज अमल को दुरुस्त करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी तकरीर का मौजू भी इसी गुफ्तगू से मुताल्लिक है, जिसका उन्वान है इब्ने आदम की खता और तसव्वुर माफी, और मुकर्रर हैं डॉक्टर शमशुद्दीन नदवी। समाअत फरमाइए।
1: अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा फरमाई और अपने एक महबूब बंदे आदम और उन्हीं से उनकी बीवी हव्वा को पैदा फरमाया और उनसे कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में आराम से रहो और मेरी हिदायत के मुताबिक चलते रहो, बस शर्त यह है कि इस दरख्त के पास न जाना और न उसके फल को खाना। लेकिन शैतान ने उन दोनों के जहन में खाम ख्याली पैदा कर दी और उस फल के खाने के फ़वाइद बताते हुए कहा कि यह फल खाकर तुम दोनों अमर हो जाओगे। दोनों ने वो फल खाया और खुदाई वार्निंग की खिलाफ वर्जी की वजह से दोनों को जन्नत से

0: मुंह में डाला और उसे एक नई जिंदगी अता की। वो कुत्ता पानी से सैराब होने के बाद एक झुरझुरी लेकर दौड़ खड़ा हुआ। पैगंबर साहब ने इस वाक़े को सुनाकर यह फरमाया कि ऊपर वाले ने उस बदकार औरत को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। यहाँ मुझे वो लोग माफ़ फरमाएं जो इंच टेप लेकर दूसरे के गुनाहों को नापते फिरते हैं और जन्नत और दोजख के फैसले सुनाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऊपर वाला नहायत रऊफ़ और रहीम, मुशफ़िक़ और करीम, कृपालु और दयालु है। वो हम जैसा नहीं है कि छोटी छोटी ख़ताओं पर गिरफ्त करने लगे और ये बावर कराने लगे कि तुम्हारे लिए माफ़ी का अब कोई रास्ता नहीं। आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि ख़ताएँ तो होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ तौबा का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए खुला हुआ है। ख़ता और माफ़ी के इस तसव्वुर ने इंसानों को मायूसी से बचा लिया। अब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। उम्मीदों के उजाले उन्हें हमेशा नेक रास्तों पर गामजन करेंगे और वो हमेशा मायूसी से कट कर उम्मीदों के साहिल से हमकिनार होंगे। बस हमारी तरफ से होना ये चाहिए कि गलती के बाद माफ़ी का ख्याल आ जाए, ताकि वक्त का कोई शैतान हमें वरगला कर मायूसी के अंधेरों में ढकेल न दे। इंसान और शैतान में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क यही है, गलतियां दोनों से हुई, मगर शैतान ने अपनी गलती को जस्टिफाई किया और आदम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। शैतान के इस अमल ने उसे हमेशा के लिए मालिक की रहमत से दूर कर दिया, जबकि आदम को माफ़ी भी मिली और उन्हें मालिक का क़ुर्ब भी नसीब हुआ। किसी बुज़ुर्गों ने क्या खूब कहा है कि वो गुनाह जो खुदा से करीब तर कर दे, उस नेकी से बेहतर है जो आदमी के अंदर तकब्बुर व बड़ाई का भरम पैदा कर दे। एक मौके पर पैगंबर साहब ने फरमाया, अगर तुम गुनाह न करोगे तो खुदावंद कुद्दूस तुम्हारी जगह ऐसी मखलूक लाएगा जो गुनाह करेगी और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को ऐसी मखलूक चाहिए जो गुनाह करे और फिर उससे माफ़ी की तलबगार और तौबा की खास्तगार हो, क्योंकि वो गुनाह न करने वाली मखलूक तो आसमानों पर मौजूद है जो गुनाह कर ही नहीं सकती, जिन्हें हम फरिश्ता कहते हैं। मगर इंसान होते हुए गुनाह हो जाना और माफ़ी मांगना, यह है बड़ा काम। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इबन आदम की खूबी और बड़ाई यह है कि उसमें आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, खाकसारी और फरोतनी हो। यही वजह है कि वो इंसान जन्नत का बिल्कुल पात्र नहीं होगा जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी घमंड और अहंकार हो। एक और मौके पर रसूल इस्लाम ने फरमाया, ए इंसानों, तुम सब के सब गुनाहगार हो, और बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। ये नहीं फरमाया कि गुनाह न करने वाले हैं। गुनाह न करना ये तो फरिश्तों की खसूसियत है, जबकि इंसान की खासियत और उसका माबहिल इम्तियाज़ वस्फ यह है कि वो ख़ता का पुतला है और फिर अपने रब के हुजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी का खास्तगार होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ए शेख नसीहत तू न कर बादा कशों को, सब नेक बनेंगे तो ख़ता कौन करेगा। एक दूसरे शायर सरफराज बज़मी ने क्या खूब तर्जुमानी की है, कई पड़ाव अभी मेरी सर गुज़श्त में हैं, दरख्त और भी बाकी अभी बहिश्त में हैं, तू बादशाह तो अफ़ो करम तुझे ज़ैबा, मैं आदमी हूँ ख़ताएँ मेरी सरिश्त में हैं।
1: दोस्तों, अभी आप डॉक्टर शमशुद्दीन नदवी से तकरीर समाअत फरमा रहे थे, जिसका मौजू था इब्ने आदम की ख़ता और तसव्वुर माफ़ी। सामीन, इस चिलचिलाती धूप में दिलो दिमाग को ठंडक पहुँचाने के लिए हम सुनते हैं एक गज़ल गुलूकार गुलाम अली की जादुई आवाज़ में, और कलाम है हबीब लतीफ़ का, समाअत फरमाइए।

0: दोस्तों, अभी आप गुलूकार गुलाम अली की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था हबीब लतीफ का। सामीन, शहर भोपाल को अदब नवाज शहर कहा जाता है। उसे कहने के पीछे कई अहम तारीखी, सकाफती और अदबी वजूहात हैं, जिनकी बुनियाद पर इसे उर्दू अदब का एक अहम मरकज माना जाता है। ये शहर अजीम शायरों और अदीबों का मस्कन रहा है और दौरे हाजिर में भी ये रिवायत जारी और सारी है। इसी रिवायत को जिन शौरा ने आगे बढ़ाया है, उन्हीं में से एक नाम नुसरत मेहदी का भी है। आइए सुनते हैं नुसरत मेहदी से उन्हीं की जुबानी उनका कलाम, समात फरमाइए।
1: गजल का मतलब पेश करती हूँ। अर्ज किया है कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चराग जल नहीं रहा। और हुस्न मतला है कि गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा। और शेर ये कि मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई, मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा, कि आग में खड़ी हूँ और जिस्म जल नहीं रहा। और शेर के सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, सफ़र में एक हुजूम था मगर ये राज अब खुला, कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। और ये गज़ल का मतलब है कि मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम। और ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, ये बज़ाहिर जो बेनियाजी है, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम, कुछ परेशान तो नहीं हो तुम। और कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, कैसी वहशत है क्यों भटकते हो, खाना वीरान तो नहीं हो तुम, खाना वीरान तो नहीं हो तुम। और शेर ये कि आओ बैठो करो गिले शिकवे, आओ बैठो करो गिले शिकवे, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम। और ये बता रखा शेर के इश्क में काम अक्ल से लोगे, इश्क में काम अक्ल से लोगे, इतने नादान तो नहीं हो तुम, इतने नादान तो नहीं हो तुम। और ये शेर क्या कहा तखलिया, अरे तौबा, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम, कोई सुल्तान तो नहीं हो तुम। संजीदा से गज़ल है, उसका मतलब समाध कीजिएगा। अर्ज़ किया कि वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, न जाने क्या हुआ मुझ में थकान बैठ गई। और फिर इसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, फिर उसके बाद परिंदे ज़मीं पे गिरने लगे, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई। और करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, करीब था कि ताल्लुक़ बहाल हो जाता, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई, अजब खामोशी मगर दरमियान बैठ गई। और शेर समाप्त कीजिएगा कि हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हवेली छोड़ के सब लोग चल दिए, लेकिन हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई, हर एक हुजरे में एक दास्तान बैठ गई। और शेर समात कीजिएगा कि बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, बुलंदियों पे पहुंचकर मैं खुश बहुत थी मगर, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई, ज़मीं की समत जो देखा तो जान बैठ गई। और मकता है कि ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, ज़बां दराज़ों से नुसरत कहाँ तलक लड़ती, सो दिल पर सब्र की रख कर चटान बैठ गई, वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई। समझ कीजिएगा, आ

0: आज है।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा नुसरत मेहंदी से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आईना यहीं खत्म होता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना। इसके तहत आज आपने सुनी शमसुद्दीन नदवी से उनकी तकरीर, जिसका उन्वान था इब्ने आदम की ख़ता और तसव्वुर माफ़ी। साथ ही आपने सुना नुसरत मेहदी से उनका कलाम। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक

0: अंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
4: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
5: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। MVM कॉलेज में NCC के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलुमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब MP लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरीय सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जलकर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में NSG ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंधक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने OBC युवाओं को रोजगार रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की

जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 360,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसी नगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 IPS अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां ADG से लेकर DCP स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

வந்தே மாதரம். एक उद्घोष जो आजादी के संग्राम का जय घोष बन गया, इसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को ये मातृवंदना रची थी। बाद में इसे 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये गीत देशभक्ति, एकता, त्याग और बलिदान की भावना जगाने वाला प्रतीक बन गया। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। इस तरह से ये मातृवंदना अब तक 1.5 सदी का सफर तय कर चुकी है।

0: वंदे मातरम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरवगान की डेढ़ सदी। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च

0: विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों में निरंतर आर्थिक सुधारों के कारण देश में हुए परिवर्तन की सराहना भी की है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का जिक्र किया।
3: Which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे पर वार्ता ठप होने के कारण ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है। उन्होंने ईरान से समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी ईरान की मीडिया द्वारा अमेरिका की वार्ता फिर से शुरू करने की मुख्य शर्तें उजागर करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और केवल एक परमाणु संयंत्र को सक्रिय रखे। अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग को भी छोड़ना चाहता है और ये स्वीकार चाहता है कि ईरान की अधिकांश जब्त संपत्तियां अवरुद्ध रहेंगी। अमेरिका ये भी चाहता है कि क्षेत्रीय संघर्ष वार्ता पूरी होने के बाद ही समाप्त हो। इस बीच ईरान ने इन शर्तों को खारिज कर दिया है और वार्ता फिर शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में विशेष रूप से लेबनान में सैन्य अभियान बंद होने चाहिए, प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जानी चाहिए। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता की भी मांग की। विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोम में कल फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम व्यूप 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और यूं तो इस वक्त आमतौर पर ये कार्यक्रम आप घरों के भीतर या कार्यालयों में अगर पहुंच गए हैं तो वहां सुनते हैं। और अभी जिस तरह की चेतावनियां जारी की जा रही हैं कि जहां तक हो सके घर से ना निकला जाए जब तक बेहद ही ज़रूरी ना हो, तो ठंडी ठंडी छाँव में सुने आपका अपना ये मनपसंद कार्यक्रम। और पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप सब हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पोलीपाथर लालकुआ जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, सागर रजक और बेबी परी रजक। छत्तीसगढ़ बेमेतारा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाविया, सुषमा सारथी, साथ में हैं सुरेश और कमलकांत सारथी। और ये चिट्ठी भाटापारा छत्तीसगढ़ की है, सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी की। ये गाना शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और एसएच बिहारी। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

बिल्कुल दोस्तों, अभी जिस तरह से तापमान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, उसमें घर का कोई सदस्य अगर दिन में निकलता है तो बाकी लोग ये ज़रूर पूछ लें कि कहाँ चल दिए। अब अगले गाने के बारे में बता दें आपको, ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है, फिल्म का नाम है एक नज़र। पसंद करने वाले श्रोता हैं पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या आदि, बीटी वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे, राम लोहारी खंडवा से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार वर्मा, बंडा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार और बंडा। ये चिट्ठी इचल करंजी महाराष्ट्र की है। महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, वसंत हजारे, प्रमोद और उनके परिवारजनों की। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नास प्रवीण। सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना, फिल्म का नाम एक नज़र।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है। फिल्म का नाम है नाच उठे संसार। पसंद करने वाले श्रोता आप सब हैं क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से टैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन। प्रणाम सिटी खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। बेमेतारा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे। जरुण वरुण से बाबा साहब बाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे आदि और युवराज। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, दासदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बोरखेड़ा पित्रामल, उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूडत। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले।

चार मिनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल अनिता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी निजामाबाद आंध्र प्रदेश से वासुदेव सावलानी अशोक कुमार और एक और नाम है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री जवाहरगंज जबलपुर से जैनेन्द्र जैन महेंद्र जैन सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम ज्योति ललित मनीषा शुभम देवी किशन भावना कनिका आदित्य मानस और मन पटेल गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा कल्याणी मिश्रा रिया शलभ रक्षा वैष्णवी रुद्रांश आशीष चौबे ऋचा चौबे शानवी चौबे पी एन मिश्रा देवेश निगम और योगेश मेहता पिंजई जिला मंडला से सुमत कुमार जैन कबीर जैन वरुण जैन मीना जैन और वान्या जैन आप सबकी पसंद पर अगला गाना मुकेश की आवाज़ में गीत आनंद बख्शी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फिल्म का नाम है मिलन।

सिवनी से संध्या चौरसिया और विजय चौरसिया, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परू, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, सारनाथ बनारस से बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू और अरुणेश यादव, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेहंदी, सौरव शाइना और निवान शर्मा, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, गड़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम है मेला।

मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन, सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा, कंवर कॉलोनी बाड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। और ये चिट्ठी जतुका किशनपुर की है। आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बेलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, फेरन यादव और मुन्ना खान। ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है रंगोली।

1962 की ये फिल्म है रंगोली, और उस वक्त संचार क्रांति का वो दौर नहीं था जो आज है, लेकिन तब भी शैलेंद्र ने आने वाले समय की आहट पहचान ली थी। तभी तो उन्होंने लिखा कि छोटी सी ये दुनिया, बिल्कुल अब दुनिया छोटी सी हो गई है और यूं कह लें कि हमारी मुट्ठी में सिमट आई है। और इसी संचार क्रांति का ही कमाल है कि ऐप के माध्यम से अब ये कार्यक्रम आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, तो अनुमति दीजिए अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जबलपुर है। 10:58 होने को है। वक्त हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। श्री शाह इस दौरान रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 साल के अंतराल के बाद आज केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार शपथ ग्रहण करेगी। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके अलावा 20 अन्य मंत्री भी तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के

0: बीच 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर एक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 एलपीजी टैंकरों और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ चुके हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता थीं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेतवाणी एप्लीकेशन भी इस मौके पर लॉन्च किया गया। भारत ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की है।
2: श्रोताओं नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से उठाइए फोन और कॉल कीजिए 2660902 पे, और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के चंद गीत। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
3: जी नमस्ते।
2: कौन साहब बोल रहे हैं?
3: जी
2: जी
3: मैं कहते हेलो।
2: हाँ जी बोलिए।
3: आवाज नहीं आ रही है आपके?
2: हमको तो आ रही है आपकी आवाज।
3: आ रही है?
2: हाँ
3: जी जी जी अभी आ रही है।
2: हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ मैडम जी।
2: सेंधवा से देवीदास जी?
3: जी
2: जी देवीदास जी, और सुनाइए क्या हाल है आपके?
3: जी बढ़िया हाल है मैडम जी।
2: और कॉल कितनी बार लगा चुके हैं आप आकाशवाणी में?
3: कम से कम 10 से 12 बार, 10-12 दिन में लगा है।
2: अरे वाह, तो कॉल आपकी बात कब हुई है? एक हफ्ते पहले हुई थी या बीच में हो चुकी है?
3: जी एक हफ्ते पहले हुई थी।
2: चलिए फिर ठीक है, हम आपसे बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
3: जी मुझे गीत सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब।
2: नसीब? अच्छा नसीब का कौन सा गीत?
3: वो जो नई वाली नसीब।
2: अच्छा नई वाली नसीब, हाँ तो गीत बताइए ना कौन सा।
3: शिकवा नहीं किसी से शिकायत है, किसी से गिला।
2: हाँ
3: नहीं।
2: शिकवा नहीं किसी से, ठीक है, कुमार सानू की आवाज में है जो गीत।
3: जी
2: जी, जी बिल्कुल, आपका गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं।
3: जी मैडम,
2: ठीक है देवीदास जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
3: नमस्कार,
2: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते।
1: हरदयाल जाटव, जिला सिपरी, मध्य प्रदेश।
0: हरीलाल जाटव, क्या नाम बताया आपने?
1: हरदयाल जाटव।
0: हरदयाल जाटव। हरदयाल जाटव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे 4-5 दिन पहले ही बात हुई है।
1: नहीं, मैडम जी, मैंने 1 तारीख को बात की थी।
0: अच्छा, 1 तारीख को बात की थी।
1: हाँ,
0: चलिए।
1: शनिवार को भी। आज 17 तारीख है ना।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। और क्या हाल है
1: हाँ जी,
0: आपके?
1: बस बढ़िया है मैडम जी। गर्मी के मार बुरा हाल है।
0: गर्मी में तो सभी के बुरे हाल है। एसी
1: अब
0: कूलर सब फेल हो रहे हैं इसके आगे।
1: गर्मी में तो जहाँ मान लो

0: लाइट आ रही जा रही चली जाती है दो दो घंटे तीन तीन घंटे के लिए, तो
1: वही
0: और घर से बाहर निकलो तो गर्मी, भीतर रहो तो गर्मी।
1: हाँ वही तो।
0: आप कैसी मैडम?
1: हम बहुत अच्छे हैं, बस चल रहा है काम गर्मी में रहते हुए। सारे काम अपने कामों में तो कोई रुकावट आती नहीं है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी है ना,
0: काम तो मैडम, काम तो ऐसा कि वो तो जिंदगी भर लगा है,
1: लगा
0: करो ना
1: रहता है
0: करो तो
1: वो।
0: जो काम तो जिंदगी भर लगा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: हमको सुना दीजिए आंटी नंबर वन का।
1: अच्छा आंटी नंबर वन।
0: हाँ जी,
1: उसका कौन सा गीत?
0: बुलबुला रे बुलबुला मैं तेरी बाहों में बुला।
1: अच्छा बुलबुला, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अपना ये गीत सुन पाएंगे, ठीक है
0: मैडम जी
1: हरदयाल
0: अपना
1: जी?
0: ना अपना नाम
1: हाँ मेरा नाम कविता रावत है
0: आपसे बहुत दिन से मुलाकात हुई, आप पहली बार बात हो रही है आपसे। हाँ
1: जी। नहीं शायद 1 तारीख को जब आपने कॉल किया था ना, तब हमसे ही बात हुई थी।
0: अच्छा,
1: हाँ तभी हमें आपका नाम भी याद है।
0: नहीं माने एक मैडम जी आती है कविता रावत, एक और कविता आपसे।
1: नहीं कविता नाम की एक ही अनाउंसर है यहाँ पर।
0: अच्छा,
1: चलिए ठीक है हरदयाल
0: तो
1: जी
0: माने चलो ठीक है जी,
1: जी
0: ओके।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा। अशोक
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: सिंह
0: अशोक सिंह जी।
1: जी। मैडम कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए क्या हाल है
1: मैं भी
0: आपके?
1: ठीक हूँ। गर्मी का मजा ले रहे, गर्मी पड़ रही जोरों से हम जिस तरह से। आप
0: देखिए हर मौसम का अपना अलग अलग मजा है।
1: जी मजा लेने के, ये जो प्रकृति ने बनाया
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रकृति ने बहुत सुहावने मौसम बनाए थे, हम लोगों ने अपने स्वार्थ से परिपूर्ण
1: हाँ,
0: होकर
1: चाहत
0: खराब
1: या
0: कर दिया
1: अनुसार
0: है।
1: सब उनको बजाय अपने ही हैं सब।
0: वही वजह अपनी है खुद।
1: ठीक
0: तो और क्या हाल है आपके, घर में सब कैसे
1: है
0: हैं?
1: मैडम, बस सब परिवार सही है। आपके परिवार और आकाशवाणी टीम भोपाल जी।
0: जी हाँ। गीत बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत,
0: गीत कौन सा सुनेंगे? फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है ना।
1: हाँ गीत सुनवा दीजिए मैडम। गीत सुनवा दीजिए, पलकों की छाँव में। हाँ,
0: पलकों की छांव में, ये फिल्म का नाम है?
1: डकिया डाक लाया।
0: अच्छा, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ मिल गया, डाकिया डाक लाया।
1: किशोर कुमार की आवाज में है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। और
1: नहीं तो
0: बड़ी
1: देश प्रेमी का सुनवा दीजिए जी।
0: नहीं, आपने ये बहुत ही उम्दा पसंद है आपकी, छांट कर लाएं ये गीत।
1: हाँ, बहुत याद आती पहले चिट्ठी पत्रियों को
0: बिल्कुल
1: आता था, पोस्टमैन याद करते थे। अभी भी
0: हाँ
1: आते हैं और कम आते हैं।
0: जी। चलिए अशोक सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा आपसे बात होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: अब
0: नमस्ते।
1: काफी दिन हो गए मैडम जो कि
0: जी
1: है।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: अरे नमस्कार।
0: नमस्ते चांद भाई।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी। ये मान के चलिए, कहते हैं ना, दौलत की तमन्ना है, ना दौलत की तमन्ना है, ना शोहरत की है आरजू, और आपसे बात हो जाए मैडम जी तो सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: अरे वाह चांद भाई, बहुत अच्छी शायरी कर दी है आपने तो।
1: अरे अब आपसे बात कर लेता हूँ तो समझ लो कि मुझे लगने लगता है कि नई जिंदगी मिल गई। समझ,
0: बहुत टाइम बाद कॉल किया है आपने ना।
1: अब तो क्या करें, अब अंकुश तो लगा दिए है तो उसके तो पाबंदी करना पड़ेगा। प्रतिबंध आपने लगाया है तो उस पर हमें अमल भी करना
0: नहीं
1: पड़ेगा।
0: नहीं प्रतिबंध नहीं है, ये दूसरे सब श्रोताओं के लिए थोड़ा सुविधाजनक बना दिया गया है, आप उस
1: तो
0: पर
1: हम
0: बिल्कुल
1: तो
0: भी
1: खुश हैं मैडम जी, आपसे बताएं सब में खुश हैं। फोन लग
0: सब में।
1: जाए तो, ना
0: देखिए
1: लगे
0: आपका आज
1: तो
0: भी
1: कान
0: कॉल
1: पे
0: लग
1: सुन।
0: गया और बात हो रही है आपसे, है ना।
1: लेकिन हो गया, अगर काफी इंतजार के बाद कोई चीज या कोई वस्तु मिले मैडम जी तो उसका मजा ही कुछ और अलग होगा।
0: बिल्कुल। अच्छा हमारे श्रोताओं को बता तो दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि हम
1: अब आपने तो सब कुछ बता दिया, पहले से ही बता दिया कि
0: बिल्कुल
1: चांद मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं
0: बिल्कुल
1: कि ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चांद भाई अब ये
1: अच्छा
0: बताइए कि आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: अभी मुझे गलत फहमी हो रही है क्योंकि आप डबल रोल हैं, क्योंकि कविता रावत हो सकती हैं या
0: बिल्कुल
1: सुनीता।
0: कविता रावत, सही पकड़े हैं आप।
1: अरे तो मैडम जी ये मैं बता दूं, शर्त
0: हाँ
1: बता दूं, बातें हो जाएं क्योंकि काफी दिन में हुई है, गीत भले कम बजाइएगा। मैं बता दूं मैडम जी आपको कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी लखनऊ में दीप्ति जोशी,
0: हाँ हाँ
1: और मथुरा वृंदावन में रश्मि जी, और आकाशवाणी भोपाल में सुनीता और आप, और विविध भारती मुंबई में ममिता सिंह,
0: अच्छा
1: एकदम इतनी जबरदस्त आवाज, मिलती जुलती हमें लगता है कि आप बहने हैं एकदम, बिल्कुल
0: अरे
1: आवाज में कोई भी गलत फहमी नहीं
0: बिल्कुल
1: है। और
0: बिल्कुल
1: ये पकड़ हमें जरूर रहती है क्योंकि हम आकाशवाणी के इतने गुलाम हैं मैडम जी, बहुत दूर दूर तक फोन लगाते हैं, सुनते हैं,
0: जी
1: क्योंकि इसीलिए आप लोगों की आवाज पहचानते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। और
0: हाँ
1: आज अकेले हैं, आपकी भाभी जी नहीं है तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है, लेकिन अब
0: अच्छा
1: गाना बता दें,
0: हाँ
1: फिल्म का नाम है मैडम जी, कविता मैडम जी आपसे बताएं, वो है दुश्मन फिल्म है
0: अच्छा
1: ये उनकी, राजेश खन्ना की।
0: अच्छा अच्छा अच्छा दुश्मन ना करे
1: तो
0: दोस्त ने जो काम किया है।
1: नहीं, वो तो आखिर क्यों कहा है, बाकी तो मैं
0: अच्छा
1: आपको एक
0: अच्छा
1: एक पुथाना बांध के रख दूंगा
0: हाँ हाँ
1: अंग्रेज,
0: बिल्कुल सही
1: ये
0: बात है।
1: दुश्मन है और उसी के किशोर कुमार की आवाज है, और गीत के बोल हैं कि वादा तेरा वादा,
0: अच्छा
1: वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, वादा तेरा वादा। जय बाला मैडम जी।
0: बहुत अच्छा गाना है ये तो, और बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, और यदि ये गीत नहीं मिला तो
1: तो फिर आप कोई भी सुनवा देंगे दौड़ेगा, लेकिन मिल जाए कोशिश करिए, नहीं तो फिर रोटी का सुनवा देना
0: मिलेगा
1: कोई, रोटी
0: मिलेगा
1: हाँ,
0: वैसे ये गाना।
1: नहीं तो फिर कोई भी सुनवा देना दौड़ेगा, फोन अब शामिल करिएगा मैडम जी, आपको पूरे
0: बिल्कुल आप
1: आकाशवाणी
0: बिल्कुल
1: मध्य प्रदेश
0: कल
1: भोपाल
0: कल
1: को।
0: अपना प्रोग्राम सुनिएगा, आपको मिलेगा ये अपना
1: जी,
0: प्रोग्राम सुनने को।
1: धन्यवाद मैडम जी। वो हो
0: जी
1: गया फोन, 10-15 दिन में लगा है तो का
0: चलिए
1: बहुत अच्छा है, रोज रोज में मजा नहीं
0: जी
1: आता।
0: जी जी चलिए
1: और एक
0: धन्यवाद
1: बात और बता दे मैडम जी कि
0: जी।
1: ये प्रेमदास बाबा जी हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ में गाना सुनते हैं, और क्या है कि
0: हाँ
1: क्योंकि गाने बदलते रहो मैडम जी, और ये सब बदलते रहो तो कार्यक्रम की रोचकता बढ़ी रहती है, बनी
0: बिल्कुल
1: रहती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, और ये गाना
0: चलिए
1: काफी दिनों से सुनने को नहीं मिला था मैडम जी, तो इसलिए
0: बिल्कुल
1: हमने
0: बिल्कुल
1: जो है,
0: सुनवाएंगे।
1: हाँ कोई
0: ठीक है
1: दिक्कत तो
0: नहीं
1: नहीं
0: कोई दिक्कत नहीं। चलिए
1: है।
0: कॉल करने के
1: और
0: लिए धन्यवाद चांद भाई, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हुए हैं।
1: जी,
0: ठीक है
1: आपको प्रणाम दे दीजिए
0: जी
1: मैडम जी,
0: नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते अमिता दीदी। लास्ट
0: कभी
1: बार आपसे ही बात हुई थी। देखिए, आज लगाया बहुत बिजली लगी रहती हूँ, लग जाता फोन।
0: ये बात सही है। कुछ श्रोता हमारे सच में बहुत लकी हैं,
1: क्योंकि
0: उनका
1: आपसे
0: कॉल।
1: बात हुई थी उसके बाद आप ही फोन लगाए। 15 दिन तो हो गए आराम से। हाँ,
0: अच्छा। शुभ नाम बताइए अपना थोड़ा
1: मैं
0: सा।
1: बरेला की वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ दीदी।
0: हाँ कहाँ से?
1: बरेला जबलपुर से
0: बरेला जबल।
1: वंदना उपाध्याय भूल गई दीदी। बेल का शरबत पूछा था आपने।
0: नहीं आप मुझे
1: हाँ,
0: गलत समझ रही हैं। आप कौन सी दीदी समझ रही हैं?
1: अमिता दीदी।
0: अमिता नहीं, कविता। हम लोगों की आवाज में फर्क नहीं दिखा आपको?
1: मुझे तो अभी वैसी लग रही। अच्छा, कविता दीदी है, आपसे भी मेरी
0: जी
1: बात हो चुकी है।
0: हाँ, हम लोग
1: हाँ।
0: तो बहुत अलग हैं। आपने कैसे हमको अमिता दीदी समझ लिया?
1: तो क्या हुआ ना,
0: नहीं, वो
1: आपको
0: बहुत
1: ही
0: सीनियर है, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी।
1: बहुत अच्छी है। और मैं कोई बात नहीं,
0: चलो कोई बात
1: अमिता
0: नहीं,
1: दीदी
0: अमिता
1: नहीं तो
0: दीदी ना
1: कविता
0: सही,
1: दीदी
0: कविता
1: से
0: दीदी सही।
1: नमस्ते कविता दीदी। आपसे भी
0: नमस्ते।
1: मेरी बात हो चुकी है वैसे।
0: अच्छा
1: हाँ हाँ
0: अच्छा
1: तो कैसे हैं
0: अच्छा
1: दीदी आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल है।
1: बढ़िया है।
0: गीत बताइए, आज कौन सा गीत सुनने का मूड है आपका?
1: कौन सा गीत? रेडियो बंद करूं पहले मैं। पसंद
0: कोई सा भी अपनी पसंद का बताइए।
1: का? पसंद का? अब आपसे बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना बोलूं। पहले बोलती ये बोला वो बोलूंगी, ऐसा सुनूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ वो वाला सुना दीजिए। चुरा लिया है तुमने
0: अच्छा,
1: जो दिल
0: यादों की
1: को।
0: बारात फिल्म का।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: और आप बोल रही थी कि रानू गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ कि वो फोन क्यों नहीं कर रही है।
0: हाँ मैं भी इंतजार
1: उनके
0: कर रही हूँ भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया है, क्यों नहीं आ रहा है
1: लिए
0: फोन।
1: गाना डेडिकेट। और हमारे दो फ्रेंड हैं, विपिन कटारे जी
0: हाँ
1: और नंदिनी। ये
0: हाँ ये
1: सब फ्रेंड सर्कल टाइप का बन गया। जब आता नहीं तो इंतजार करते कि यार इसका फोन
0: सच
1: आ रहा
0: बात है,
1: नहीं है,
0: सच
1: ऐसा
0: बात है। कुछ लोगों से
1: नहीं।
0: अपन भले ही मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी उनसे पुराना रिश्ता
1: वो
0: है।
1: अच्छी बात करती थी, बढ़िया मस्त मजा आता था। वो लगाती थी फोन,
0: हाँ
1: तो मैं भी वेट कर रही हूँ जैसे आप वेट कर रही हो उनके फोन का, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ये मैसेज रानू गुप्ता तक पहुंच जाना चाहिए, कोई
0: बिल्कुल
1: आपको
0: बिल्कुल, कल
1: याद
0: पहुंचेगा,
1: करता
0: लेकिन
1: है।
0: कल सुनेंगे ना सब प्रोग्राम, तो कल आपका मैसेज
1: हाँ
0: पहुंचेगा और परसों कॉल करेंगे, देखिएगा।
1: हाँ
0: चलिए वंदना जी,
1: नमस्ते
0: आपसे
1: दीदी, बहुत
0: बातचीत
1: अच्छा
0: करके
1: लगा
0: बहुत
1: आपसे
0: अच्छा
1: बात
0: लगा।
1: करके।

0: हेलो
1: उठ तो जाओ। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला सरायपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: ग्रामपुर छतापुर से। जी
0: छतापुर।
1: जी मैम।
0: अच्छा, और कैसी हैं आप?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं? हाँ?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: जी घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं मैम।
0: घर का काम करना भी आसान थोड़ी ना होता है।
1: जी
0: और
1: आप
0: घर में
1: कविता
0: कौन कौन
1: मैम
0: है?
1: बोल रही हैं? कविता
0: हैं?
1: मैम बोल रही हैं आप?
0: जी कविता मैडम बोल रहे हैं, आपने पहचान लिया।
1: जी मैम, आपकी आवाज बहुत सुंदर है। जी
0: थैंक यू, आवाज भी सुंदर होती
1: मैम, जब
0: अरे वाह।
1: पसंद हो तो शक्ल सुंदर पसंद होती है। जी
0: तो आपकी नजरें बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब पता है।
1: जी
0: अच्छा बताओ संगीता, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही, तो इसीलिए सुनना चाहते हैं जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ओहो, दोपहरी में पांव जले, ये वाला मिल
1: जी
0: जाएगा?
1: जी मैम।
0: ये वाला गीत है,
1: हाँ
0: सुना है पहले? कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म
1: कई
0: का
1: बार
0: है?
1: सुना है मैम।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये गीत?
1: फिल्म तो पता नहीं, वो ऐसे ही है, जट की दोपहरी में पांव जले है, सैया पांव जले है।
0: चलिए कोशिश करते हैं, अगर ये गीत नहीं मिला तो
1: सुनवा देना बाल माता। जी
0: बाल माँ का। हाँ, ये तो गीत बहुत
1: जी
0: प्यारा है।
1: आपसे बहुत दिनों बात हुई, हमको तो याद
0: बाल माँ
1: नहीं
0: का
1: है
0: कौन सा, ये
1: वैसे
0: तो
1: भी,
0: बताओ।
1: लेकिन और मैम जी हमसे तो होती रहती है। जी
0: अच्छा, ये
1: आपसे
0: तो बताओ
1: कोई
0: कि है ना, बालमा फिल्म का कौन सा गीत?
1: सा भी सुनवा देना।
0: अच्छा ठीक है ठीक है।
1: जी
0: चलो संगीता जी, कॉल किया आपने और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, दिल खुश कर दिया।
1: जी मैम, हमको तो आपसे और मैम से किसी भी ऐसी बात हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है।
0: चलो थैंक यू कॉल करने के
1: लेकिन
0: लिए।
1: जी जितना हमें गाना सुनने में वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
0: चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते जी।
1: सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ। शेख हैदर खान।
0: शेख
1: हैदर खान?
0: जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही है। शेख हैदर खान जी।
1: नहीं, मैडम, मैं लगाता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। मैडम,
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं तो यूँ तो किसान हूँ, मतलब खेती का काम है,
0: अच्छा जी।
1: और आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता भी हूँ मैं। हाँ,
0: चलिए, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म निकाह का गीत तो सुना दीजिए।
0: हाँ,
1: ये दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में गीत है।
0: बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हाँ
0: बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कल सुन पाएंगे आप? ये 11 से 12 बजे के बीच में ये प्रोग्राम
1: हाँ
0: है।
1: सुन लेना ना, मैं जो पे सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनिएगा और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: ओके ओके, है ना।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। कहाँ
1: बाग से बोल रही हूँ मैम,
0: से? अच्छा,
1: बाग जिला धार
0: धार जिला से। कौन बोल रही है?
1: बाग। हाँ,
0: कौन बोल रही है
1: हीरू जी बोल रही,
0: जी?
1: हीरू।
0: हीरो?
1: हाँ, बाग से।
0: अच्छा। बताइए, क्या हाल है आपके?
1: आप बढ़िया? आपके कैसे हैं? बढ़िया हो के?
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया। और
1: कैसे
0: धार
1: थे?
0: में कैसी
1: गर्मी
0: पड़ रही है गर्मी?
1: गर्मी तो इधर भी है था। हाँ
0: बहुत ज्यादा ना।
1: हाँ
0: कौन सा गीत सुनना है आज?
1: कौन सा गीत? वो क्या नाम रे, कौन सा, कोई सा भी सुना दो आप।
0: कोई सा भी सुना दें?
1: हाँ
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप बहुत ही अच्छी बात बोल रही हैं। हम अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन निराश नहीं होंगी, वो गीत आपको जरूर पसंद आएगा।
1: हाँ
0: ठीक है हीरो।
1: मेरा मेरा पति मेरा देवता है, वो सुना दो। जैसा
0: अच्छा चलो, मेरा पति मेरा देवता है।
1: है जैसा है मेरा पति
0: हाँ
1: अच्छा है,
0: चलिए, ठीक है ठीक
1: वो
0: है,
1: बना
0: वही
1: बनाना।
0: सुना देंगे, वही सुना देंगे। चलिए, कॉल करने के लिए
1: हाँ
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर हैं। एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच और उनके साथ भारत की मित्रता के दायरे को बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, वहीं मतदान 18 जून और मतगणना 22 जून को होगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रदेश में आज व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट से लोग

घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा सहित प्रदेश के 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर हमने लिया है फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म साजन का ये गीत।

साहिबान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था शिव हरि का। पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। पसंद आप सभी श्रोताओं की है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। साथ ही राजारामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। आप सभी की फरमाइश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत सुनने की, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल ने। बोल रानी मलिक के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म त्रिदेव का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीता बिरक की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। तो लीजिए सुनिए फिल्म त्रिदेव का ये गीत।

बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: विषय राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 5वीं कड़ी।

0: श्रोतागण प्रणाम। कैसी लग रही हैं छोटी छोटी कहानियाँ? आनंद आ रहा है ना? पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि दमनक ने करकट को छोटी छोटी कहानियों से ये समझाया कि बुद्धिर्या से बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है बलवान भी वही अधिक होता है। अब आगे।
1: हाँ दमनक, तो आप कहते हैं उपाय द्वारा संजीवक और पिंगलक की मित्रता तोड़ी जा सकती है।
2: हाँ मित्र, मैं भी अपने बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डालकर उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा।
1: यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए, हमारा मार्ग मंगलमय हो।
3: आओ आओ दमनक, क्या समाचार है आजकल? दिखते नहीं, साथियों के क्या समाचार हैं?
4: श्रीमान को तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है और ना ही किसी अन्य पशु का। फिर भी अभयदान हो तो कुछ कहूं महाराज?
3: निर्भय होकर कहो दमनक, हमें ज्ञात है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं।
4: मैं आपकी शांति भंग करने कभी नहीं आता महाराज, परंतु राज कार्य की हानि देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा तो मैं चला आया।
3: आपको बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हैं वही कहें।
4: देव, वो संजीवक आपके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वो आपको मारकर संपूर्ण वन प्राणियों का स्वामित्व धारण करना चाहता है।
3: दमनक, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो। संजीवक और मैं भ्रातुतुल्य मित्र हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
4: महाराज, मुझे वो अपना विश्वस्त समझता है एवं मुझे इस जंगल के मंत्री पद का लोभ भी दिखाता है महाराज।
3: संजीवक मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रख सकता है ये मेरी कल्पना से परे है। इतना सब कुछ सुनने पर भी उसके लिए मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण करने पर भी वो प्रिय ही लगता है।
4: इसीलिए तो राजद्रोह जैसा दोष उत्पन्न होता है। एक बात बताएं महाराज, आप किसी विशेष गुण के कारण उस निर्गुण संजीवक को अपने सन्निकट स्थान देते हैं। देव, यदि ऐसा सोचते हैं कि वो रिष्टपुष्ट बलवान आपके शत्रुओं को मारने में आपकी मदद करेगा तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हैं। अतएव महाराज, मेरी मानिए तो कोई उपाय करके आरोप लगाकर उसे खत्म कर दें।
3: मैं क्या उपाय करूं? दमनक, उसे मैं अभयदान दे चुका हूं, स्वयं उसकी हत्या कैसे करूं? संजीवक मेरा मित्र है। सच कहते हैं कि पहले तो किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए और यदि स्नेह कर ही लिया गया है तो उसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। स्नेह से किसी को ऊपर चढ़ाकर गिराना नहीं चाहिए।
4: जी महाराज।
3: तभी तो द्रोही होने पर भी मुझे उसके साथ विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए।
4: स्वामी, द्रोही व्यक्ति को क्षमादान देना राजधर्म नहीं है, अन्यथा राजा स्वयं ही उसके हाथों मारा जाता है महाराज। एक बात और, संजीवक के संग रहते हुए आपने राजधर्म भी छोड़ दिया है, इस कारण आपके अनुचर भी विरक्त हो चुके हैं महाराज। वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप दोनों ओर से पछताएंगे महाराज।
3: दमनक, आखिर इसके प्रमाण क्या है कि वो मुझ पर दुष्ट बुद्धि रखता है?
4: महाराज, उसने आज मेरे सामने ये निश्चय किया है कि कल प्रातः काल होते ही वो आपको मार डालेगा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराज, कल प्रातः काल वो संजीवक क्रोध से लाल मुख और आंखें लेकर अपने अधरों को फड़फड़ाता हुआ आपकी ओर देखेगा। आप समझ लेना, फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। मुझे आपको सूचित करना आवश्यक था, सो ही मैंने किया। आखिर आप जाने महाराज।

0: क्या बात है संजीवक जी, कुछ शांत प्रतीत होते हैं।
1: आओ मित्र, आपका स्वागत है। सकुशल हैं?
2: सेवक जन की कुशलता होती कहाँ है?
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मित्र, मंत्रियों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना उचित नहीं। जो व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होने पर भी राजा की रहस्यात्मक बातों को सार्वजनिक कर देता है, वो राजकार्य में हानि के अपराध में नरकगामी होता है।
1: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो महाराज का मित्र हूं।
0: आपका हृदय तो निश्चल है, परंतु वो पिंगलक आपके ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा भी है कि वो कल प्रातःकाल होते ही आपको मारकर बहुत दिनों बाद सारे साथियों को तृप्त करे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये कृत्य उचित नहीं है, आप पर मित्र द्रोह का पाप लगेगा, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि वो मांसाहारी हैं और आप शाकाहारी, इसी कारण आप उनके जातिगत शत्रु हैं और शत्रु को किसी भी उपाय से मारना पाप नहीं है। इसी कारण मैंने आपके सामने रहस्य खोल दिया। अब आप जो उचित समझे वो करें।
1: दमनक, क्या यह संभव है किसी के इतने निकट रहकर उससे बैर किया जा सके? मैं तो चेतना शून्य हो रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता से यह समझता है कि मैं राजा का प्रिय हूं, उसे सींग रहित वृषभ के समान समझना चाहिए।
0: हाँ,

0: पिंगलक के साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो उसके साथ ही मेरे विरुद्ध हो चुके होंगे। अब तो मेरे समझाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा।
1: सही कह रहे हैं।
0: अब मुझ जैसे निरपराध व्यक्ति के विषय में कोई बातें नहीं सुनेगा।
2: मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिंगलक से मिलें, अपने वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मैं आपके साथ हूं।
0: तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकता हूं, परंतु सभासद, सभासद अगर दुष्ट हो तो भले लोगों का वहां रहना कठिन होता है। वे किसी न किसी उपाय से भले लोगों को मार डालते हैं।
1: ये आप कैसे कह सकते हैं?
0: तो सुनो, किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके बाघ, श्रीगाल और काक, ये तीन अनुचर थे। एक दिन उन लोगों ने कथनक नामक एक ऊंट को देखा जो वन में अकेले भटक रहा था।
1: अच्छा।
0: उसे देखकर मदोत्कट सिंह ने कहा,
3: ये तो कोई अपूर्व जीव है। लगता है साथियों से बिछड़ गया है। ये वन का है या ग्राम जीव?
4: स्वामी, कथनक नाम का ये ऊंट गांव का है। ये आपका भक्ष है, आप इसको मार डालिए।
3: नहीं नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। शत्रु भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसे मारने से पाप लगता है। अतः उसे अभय दान देकर यहां ले आओ, जिससे मैं उससे यहां आने का कारण पूछ सकूं।
4: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा से कथनक को मैं ले आई।
3: कहिए कथनक जी, आप गांव से जंगल की ओर कैसे भटक गए?
5: महाराज, मैं अपने सार्थवाह और साथियों से बिछड़ गया हूँ। भूखा प्यासा धूप में भटक रहा हूँ। पता नहीं कब मालिक के पास पहुंचूंगा।
3: मित्र, अब जब आप गांव से वन आ ही गए हैं तो अब पुनः गांव जाकर भार ढोने के कष्टकारक काम की क्या आवश्यकता है? इसी वन में निर्भय होकर निवास करें और कोमल घास को चरें।
5: महाराज की जय हो।
6: तब से ही वो कथनक मदोत्कट एवं उसके अनुचरों के साथ सानंद रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का किसी जंगली हाथी के साथ भीषण युद्ध हुआ। हाथी के मूसल समान दांतों के प्रहार से सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। भयंकर पीड़ा को सहकर भी वो बच गया, परंतु शरीर के शक्तिहीन हो जाने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके पराक्रम के अभाव से अनुचर भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगे।
3: बाघ, शगाल, आप जाकर ऐसे किसी जीव की खोज करें जिसे इस अवस्था में भी मैं मार सकूं और आप सबके भोजन का प्रबंध कर सकूं।
7: जो आज्ञा महाराज।
8: प्रिय बाघ भाई, हम सब तो बहुत भटक चुके हैं, भूख भी लग रही है।
7: बहुत अधिक भटकने से क्या लाभ। मेरे ध्यान में एक योजना आई है जिससे हमारा पेट भी भरेगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
4: तो इस उपाय को बताने में विलंब क्यों? शीघ्र बताएं।
7: ये कथनक हमारे किस दिन काम आएगा? आज इसी को मारकर भोजन किया जाए।
4: हाँ, आप ठीक कहते हैं, परंतु स्वामी ने तो

0: महाराज को श्रृगाल का प्रणाम।
1: कहो श्रृगाल, क्या किसी जीव को खोज लाए हो?
0: स्वामी, संपूर्ण घूमकर हम वापस लौट चुके हैं, एक भी जीव नहीं मिला।
1: अब क्या किया जाए? दुर्बलता के कारण मैं अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकता। आप सब भूख से व्याकुल होंगे।
0: भूख की क्या बात है महाराज, अब तो एक पग चलना भी शक्ति से बाहर है। आपकी दशा क्या अलग है? ऐसे में यदि आपकी आज्ञा हो तो कथनक के मास से आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए।
1: धिक्कार है पापी, यदि फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उसे अभय दान दिया है। उसे मैं स्वयं कैसे मार सकता हूं?
0: धृष्टता क्षमा करें महाराज, यदि आप उसका वध करते हैं तो निसंदेह दोष आपको लगेगा, परंतु यदि स्वामी भक्ति के कारण वो स्वयं जीवन का बलिदान करता है तब तो कोई दोष नहीं
1: है। ये कैसी अनर्गल बात है, वो स्वयं ऐसा क्यों करेगा?
0: अगर कथनक ऐसा नहीं करता है तो आप हम तीनों में से किसी को भी मार कर अपना भोजन बना लीजिएगा। यदि स्वामी की रक्षा में हम इतना भी नहीं कर सकते तो स्वामी के अनिष्ट होने पर हमें तो वैसे भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा।
1: ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो।
2: फिर तीनों ने दुष्ट चाल चली और कथनक को लेकर मदोत्कट के पास जाकर बैठ गए।

0: स्वामी, हम संपूर्ण वन घूमाए, ना तो कोई जीव मिला, ना ही दिखाई पड़ा। प्रभु, आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें, जिससे आपको थोड़ी शक्ति मिले और मुझे सदगति, क्योंकि अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है।
1: फग्निका, आप नारी हैं और अल्पकाय हैं, आपसे स्वामी का पेट नहीं भरेगा, अपितु जीव वध का पाप भी लगेगा। आपने अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा दी, स्वामी से उदर पूर्ति ग्रहण करने का ऋण भी चुका दिया, दोनों लोकों में आपकी प्रशंसा भी हो चुकी। अब आप स्थान ग्रहण करें ताकि मैं स्वामी से कुछ कह सकूं।
0: आप बड़े हैं श्रीगाल भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
1: स्वामी, सेवक का जीवन स्वामी के अधीन होता है, वो समय आने पर उसे लेने से पाप का भागी नहीं होता है। तो देर ना करके मेरे शरीर से भोजन ग्रहण करके जीवन निर्वाह किया जाए और मुझे तीनों लोक में यश का भागी बनने दिया जाए।
2: मित्र श्रीकाल, आप महाराज के सजातीय भी हैं और अल्पकाय भी, नाखून लंबे होने के कारण आप अभक्ष्य भोजन हैं। थोड़ा सा अभक्ष्य भोजन करके अपना परलोक क्यों नष्ट करना? वैसे आपने कुलीन होने का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है, परंतु अभी मैं स्वामी के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
1: ठीक है बाघ मामा, जैसा आप चाहें।
2: महाराज, आज मेरे शरीर से भोजन किया जाए, मुझे स्वर्ग का अक्षय वास दिया जाए, पृथ्वी पर मेरे यश का विस्तार हो। अब इस विषय में कोई भी विकल्प न सोचा जाए महाराज, मुझे ग्रहण करें, मुझे ग्रहण करें महाराज।
3: इन सभी ने मीठी बातों से स्वामी के हृदय में अपना स्थान बना लिया।

0: प्रभु ने किसी को भी नहीं मारा। मैं भी सही समय में स्वयं को निवेदन कर दूं, मेरी बात सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे और स्वामी मुझे नहीं खाएंगे। बाघ मामा, आप ठीक कहते हैं, परंतु आप भी तो नखयुक्त जीव हैं, आपके मांस को भी स्वामी कैसे खा सकते हैं। कहते हैं जो मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है उसका दोनों लोकों में अनिष्ट होता है। अतः मामा आप हट जाएं ताकि मैं स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं।
1: नहीं कथनक, आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे मार सकते हैं
0: स्वामी। ये सभी आपके भोजन के लिए अयोग्य हैं, अतः आज मेरे शरीर से जीविका चलाई जाए। महात्मा साधुजन वर्षों की तपस्या से जिस सदगति को प्राप्त करते हैं वो एक श्रेष्ठ सेवक स्वामी के लिए प्राण देकर प्राप्त कर लेता है।
2: आप बिल्कुल सही कहते हैं कथनक। आओ साथियों आओ।

0: कथनक के निवेदन को सुनकर सिंह की आज्ञा से श्रगाल तथा व्याघ्र ने मिलकर उसे फाड़ डाला। कथनक का प्राणांत हो गया। सिंह के साथ भूख से पीड़ित अनुयायियों ने कथनक को खा डाला। ये कहानी सुनाकर संजीवक ने दमनक से कहा,
1: अम्मा, समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं।
2: मेरे विचार से आप कहीं विदेश भाग जाएं।
1: नहीं नहीं, जब पिंगलक क्रुद्ध है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: अरे ये दुष्ट तो युद्ध के लिए प्रस्तुत जान पड़ता है। इसने अगर अपने तीखे सींगों से स्वामी पिंगलक पर प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे अन्यत्र भेजना होगा। मित्र, आप ठीक कहते हैं, पर स्वामी और भृत्य में संग्राम होना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना मूर्खता है। ऐसे में अपमानित होना पड़ता है, जैसे टिप-टिप को होना पड़ा समुद्र के सामने।
0: और फिर उस दुष्ट दमनक ने संजीवक के मन में पाप भर दिया। फिर उसे वहां से भाग जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचकर सुनाने लगा, जिसमें टिप-टिप और समुद्र की कथा सुनाई। पर वो कथा आप सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। पश्चिम एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन LPG लेकर एक जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 LPG टैंकर्स और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय जहाज स्वदेश आ चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। AI से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई। और IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सारण है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है, पसीना अधिक आता है और पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे समय में पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन जरूरी होता है जो शरीर को सही पोषण और ऊर्जा दे। इसी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है फॉर्मुलेटेड डाइट, यानी ऐसा संतुलित आहार जिसे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें शरीर की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का सही संयोजन होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थ शामिल किए जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस डाइट में सामान्यतः दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, सलाद, दही, छाछ, नारियल पानी और पर्याप्त पानी शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें कम तेल मसाले और आसानी से पचने वाला भोजन भी शामिल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में फॉर्मुलेटेड डाइट जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में ऊर्जा और पानी की कमी जल्दी होने लगती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, थकान कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, फॉर्मुलेटेड डाइट डाइटिशियन की सलाह से लें एवं इसका लाभ उठाएं। पर अभी सुने ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य विषय पर एक भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा और भेंट करता है मनीष गजबीये।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस से विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को।
2: जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, भी आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में।
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है।
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामांसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्ति होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी जी।
2: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा।
2: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये अत्यधिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
2: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं, पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है, मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन, मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पर आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहाँ घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं। पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में, और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है।
1: जी जी, तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
2: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देख रेख में ही कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
1: जी जी जी, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
2: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में, और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
2: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए, और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिंस को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
2: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा

0: में उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है, अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी।
1: जी जी जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
0: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर भगंदर यानी फिस्चुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा देर हो गई है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें चार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते हैं कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है, ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस गुण वीर विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इन्हेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गंवा देते हैं और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें, हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर है डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीज़ें मेंशन है, तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से।

श्रोताओं, आज का युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जहां हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल एप्स, स्मार्ट वॉच और ऑनलाइन परामर्श की मदद से लोग घर बैठे अपनी सेहत पर नजर रख पा रहे हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और कदमों की गिनती जैसी जानकारियां अब तुरंत मिल जाती हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर दराज के मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले पा रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई बीमारियों की पहचान जल्दी करने में मदद कर रहा है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी आवश्यक है। केवल इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक है। स्क्रीन टाइम कम करना रखना व नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अब तो तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जो नींद की गुणवत्ता को ट्रैक करने, उसका विश्लेषण करने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीक आपको गहरी नींद, खर्राटे, दिल की धड़कन और सांस लेने के पैटर्न को समझने में सहायता करती है। तकनीक और स्वास्थ्य का संतुलित मेल हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सरल बना सकता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ विशेष सेहत सूत्र, जिससे बढ़ते तापमान में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करें। ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। हल्का व सुपाच्य भोजन लें। दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें, और निकले तो सिर व मुंह ढककर और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर निकले। लू से बचने के लिए केरी के पने का सेवन करें व प्याज की एक गांठ साथ में लेकर ही बाहर निकले। सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहने, जिससे शरीर को ठंडक मिले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर हम गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है इन सभी बातों को अपनाकर आप अपने को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का कलाकार है प्रकाश पाठक। आप सुनिएगा इनकी आवाज में चंद गजलें। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल, शायर है दुष्यंत कुमार त्यागी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली गजल। कलाम है गोपाल दास नीरज का और कलाकार प्रकाश पाठक।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गायी चांद फसलें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: दिन के 2 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गीत, उदित नारायण, वसुंधरा दास और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत OP नैयर का, खूबसूरत आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीताज और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहाँ पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरनी से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद, प्रखर चिंतक, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल, सुगम, पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर

0: सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनी

0: वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लावारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रकाश मेहरा के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे।

विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी के साथ एक और पत्र है हमारे हाथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, बोल है एस एच बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कबर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदिति, शिवानी शिमाली, और एक और पत्र है हमारे हाथ में सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। और एक और पत्र हमें मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का। हमारे ये सभी श्रोता सुना चाहते हैं तेजा फिल्म का गीत, नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ है, देव कोहली का गीत है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रंगने से दिलेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को रवाना किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौती और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग के 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे 6:45 पर। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग होगा जय जय पंती। ये थे हमारे केंद्र से आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 3:02 होने वाले हैं और मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा समाप्त होता है। शाम 5:00 हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारा ये प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
2: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली
1: है। यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
2: बिल्कुल।
1: नमस्कार मंजरी का भी।
2: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग,
1: मुद्दत हो गई,
2: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
1: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
2: जी।
1: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
2: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
1: क्या बात है?
2: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
1: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
2: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
1: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
2: जी।
1: और तो, आज एक खास दिन भी है
2: जी।
1: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
2: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
1: बड़ी मजेदार कहानी है।
2: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
1: हाँ।
2: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी, कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना
1: जी
0: हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और
1: बहुत ही
0: भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की,
1: साथ
0: जुदा ना
1: रहने के,
0: होने की, और
1: बिल्कुल
0: कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया।

0: मैं अकेले गाय न रख सकता था। गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला।
2: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।
0: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
2: चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
3: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
0: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को शक्त विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही

मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विलाकुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐंठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो, वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही।
जब जरा

0: होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई चार फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो, उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है? कौन है रे? रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ, नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये। घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे, और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मरकही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल

0: बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया। काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर
0: बढ़
1: से स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है
0: जी
1: HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज़्यादा
0: जी
1: से ज़्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी
0: संदेश
1: बल
0: है
1: देता है।
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है।

0: मैं अदौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत
0: बिल्कुल,
1: सारी जानकारियाँ।
0: हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र,
1: जी
0: पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा
1: जी
0: चलता
1: जी
0: था,
1: जी
0: मलमल कैसा होता था, तो
1: बिल्कुल,
0: ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है। वजनदार चीज़ें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन
0: हाँ,
1: वाली, कैसे वो
0: हथियार।
1: लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के ज़माने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
1: जी
0: संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो,
1: बिल्कुल,
0: देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
1: छूते
0: बार
1: हैं,
0: हाथ
1: हाँ
0: लगाते
1: वो सब
0: हैं।
1: नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीज़ें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग सी
0: रगर
1: लगा
0: रह
1: रहती है,
0: रहती है,
1: डोरी
0: हाँ,
1: लगी रहेगी
0: डोरी
1: या
0: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने,
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है।
0: से संजो कर रखा गया है,
1: जी
0: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
0: कई
1: तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है।
0: शोज भी होते हैं,
1: जी
0: कि लाइट शोज होते हैं, या कोई ड्रामा होता है, या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उससे और भी ज़्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस
1: करीब
0: वक्त के
1: पहुंच
0: बारे में।
1: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के
0: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ, उसमें
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ ठीक
0: बनारसी
1: है।
0: टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन,
1: अरे
0: सेव,
1: वाह,
0: पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मज़ा ले सकते हैं, और आप देसी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
1: तो
0: हमारी
1: हमारे
0: चाट।
1: एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो ज़रूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि
0: बिल्कुल।
1: ज़रूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही

0: ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
1: तो बस आप
0: तो ये
1: बताइए,
0: मिठाई है नमकीन,
1: ये तो आप पढ़ेंगे
0: पर
1: सामग्री
0: अभी पता लग जाएगा।
1: बताएंगी
0: तो
1: जी
0: भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना,

0: किन दोनों? भुना जीरा पाउडर और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है। और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें। निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें। ज़्यादा देर तक नहीं रखें, नहीं तो वो फट जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा। और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
1: क्या बात
0: चाहे
1: है।
0: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मज़ा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी, दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोग ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करें।

0: है जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच
1: जो
0: में
1: मोबाइल शरारते कर रहा
0: शरारते
1: है।
0: कर देता है। तो
1: हाँ
0: बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं। तो वो एक आपसी तनाव होता है,
1: झुंझलाहट होती है।
0: झुंझलाहट होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं। तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय
1: हाँ
0: मोबाइल
1: बिल्कुल
0: चलाइए।
1: बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है,
0: बिल्कुल
1: यानी दाल भात में मूसर्जन।
0: मुसरजन। और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है। वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नज़दीक और नज़दीक वालों को दूर कर दिया है।
1: सही
0: साथ
1: बात
0: रहने
1: है।
0: वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने कहा है। जी
1: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत
0: क्या
1: अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियाँ बन जाती हैं। इसे हम नज़रअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियाँ बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये ज़रूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
1: एक डोर में बांधे रहता
0: बांधे रहता था। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी।
1: था।
0: लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना ज़रूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहाँ डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे,
1: हाँ
0: पूरे टाइम
1: लेकिन
0: नहीं लगा रहेगा अपने
1: ये
0: साथ।
1: समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन ले एक।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की
1: तालमेल
0: भूमिका को
1: कैसे
0: जरा हाँ
1: जी
0: थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो
1: सही
0: होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: देख रहा
0: जबकि
1: है।
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना,
1: मुझे
0: दूरी
1: लगता है
0: बरतना
1: कि
0: अच्छा
1: राजू
0: रहता
1: जी,
0: है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
1: और
0: लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है, वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे

0: जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ।
0: जी
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है।
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज़ खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फ़ायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन।
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके
0: जी
1: लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
0: वाह,
1: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा
1: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य हैं जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
0: अनाज के साथ।
1: बिल्कुल।
0: जी,
1: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो कंप्लीट
0: सिमिलरिटी
1: हाँ जो प्रॉपर्टीज़ है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो

0: इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा अगर वो

0: फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
0: वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर पाए। हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
0: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं। उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ़ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच। क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेज बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
1: प्रोटीन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ले सकते हैं। और ज़रूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है। तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी,
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं, इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है कि
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीज़ें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूँ कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और 2 कटोरी दाल और साथ में 2 अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं 4 रोटी खा रही हूँ तो मैं 2 रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।

0: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो
1: जी
0: जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है कि जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है,
1: जी
0: अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है।
1: सीरम क्रिएटिनिन।
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार हैं कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे
0: जैसे
1: दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी, भाई बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार
0: प्यार
1: हो
0: हो जाए।
1: जाए, बहुत ही
0: यस
1: अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है, जिस
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं, पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं।

0: है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन्स ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट
1: जैसे
0: होता है।
1: ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो ज़रूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर
1: ग्रहण
0: कर रहे
1: करना
0: हो।
1: है, बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूज़िक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी
1: से
0: से।
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल वाइटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, तो और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: नींबू
1: हैं,
0: है।
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
0: ओहो,
1: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
0: हरी
1: होता है,
0: मिर्च।
1: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी।

0: और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क बुलावा, हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीज़ों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज़ अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीज़ें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए, या गेहूँ ले लीजिए, या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज़ करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फ़ायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है, वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ
0: अच्छा।
1: नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफ़िकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए, या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो
0: अच्छा।
1: पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, वो मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने को है। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। थोड़ी देर में न्यूज़ हेडलाइंस हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से दो देशों वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा है कि वे द्विपक्षीय संबंधों का और विस्तार करने के लिए दो एशियाई देशों की यात्रा करने के उत्सुक हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में दो दिन के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के बाद 21 मई से ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक होगी। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा और संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले संचालित किया जा रहा है। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और मध्य प्रदेश लीग MPL 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:02 हो चुके हैं। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित युवाओं का अपना और मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शाश्वत विष्णु रावत। बातों का सिलसिला, विचारों की रवानी और कुछ ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इन्हीं सबके साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की, जहां जागरूकता, संवेदनशीलता और स्वास्थ्य की आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, उन जगहों की जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं दीवारों, वस्तुओं और स्मृतियों में सांस लेता है। और फिर हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो आज केवल पर्यावरण की नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता का विषय बन चुका है, प्लास्टिक फ्री लाइफ यानी प्लास्टिक मुक्त जीवन। तो चलिए शब्दों, विचारों और एहसासों के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक मधुर मनमोहित गीत के साथ।
1: लहर सपनों की कैसे गिनूं।

विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। दोस्तों, दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता से जीती जाती हैं। ऐसी ही एक लड़ाई है एचआईवी और एड्स के खिलाफ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एचआईवी और एड्स एक ही चीज़ नहीं है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर करता है, और जब यह संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह स्थिति एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाती है। एड्स कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि HIV संक्रमण का अंतिम और गंभीर चरण होता है। इस बीमारी को पहली बार दुनिया ने 1980 के दशक की शुरुआत में गंभीरता से पहचाना। शुरुआती समय में लोगों के पास जानकारी बहुत कम थी और डर बहुत ज़्यादा। कई लोग ये मानते थे कि HIV छूने से फैलता है या साथ बैठने, खाना खाने, हाथ मिलाने से हो सकता है, लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इन भ्रांतियों को दूर किया। HIV मुख्य रूप से देखा जाए तो असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सिरिंज या नीडल साझा करने से और संक्रमित माँ से बच्चे तक पहुँच सकता है, लेकिन यह हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने, छींकने, खांसने या सामान्य संपर्क से नहीं फैलता, और यही जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैज्ञानिक लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रयास और जागरूकता को समर्पित है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। यह दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि विज्ञान, उम्मीद और इंसानियत के उस निरंतर प्रयास का प्रतीक है जो एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी समाज में HIV को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, और कई बार बीमारी से ज़्यादा लोग समाज के व्यवहार से डरते हैं, लेकिन सच यही है कि जागरूकता ही सुरक्षा है। सही जानकारी, समय पर जांच और संवेदनशील व्यवहार, यही इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार हैं। हमें यह समझना होगा कि बीमारियों से लड़ना ज़रूरी है, बीमार लोगों से नहीं, और शायद इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान भी यही है कि हम किसी को उसके संघर्ष में कभी अकेला महसूस ना होने दें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं KK की आवाज़ में फिल्म राज रिबूट से ये प्यारा सा गीत, जिसके बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने और संगीत है सिद्धार्थ हल्दीपुर का।

दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी सभ्यता को सचमुच समझना हो तो उसकी इमारतों से अधिक उसके संग्रहालयों को देखना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संकलन नहीं होते, वे समय के संरक्षक होते हैं। इतिहास की निशब्द स्मृतियां जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अतीत को सहेज कर रखती हैं। हर वर्ष 18 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स अर्थात आईकॉम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि संग्रहालय केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता के जीवंत केंद्र हैं। जब हम किसी संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो हम केवल वस्तुएं नहीं देखते, हम समय के विभिन्न कालखंडों से संवाद करते हैं। कहीं प्राचीन शिल्प कथा, कहीं दुर्लभ पांडुलिपियां, कहीं राजवंशों की विरासत तो कहीं स्वतंत्रता संग्राम की मौन गाथाएं। हर वस्तु अपने भीतर एक युग समेटे होती है। मध्य प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भोपाल का जनजाति संग्रहालय हो या इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय, ये स्थान केवल इतिहास को प्रदर्शित नहीं करते, उसे जीवंत कर देते हैं। आज जब दुनिया तीव्र गति से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य बखूबी करते हैं, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को सहेजना जानता है वही अपने भविष्य को भी गरिमा के साथ गढ़ पाता है।

मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या हम इतनी तेजी से कन्वीनियंस के आदि हो चुके हैं कि अब हमें उसके परिणाम दिखाई ही नहीं दे रहे? एक कॉफी कप, एक प्लास्टिक बॉटल, एक कैरी बैग, कुछ मिनटों की सुविधा और फिर वही प्लास्टिक वर्षों तक धरती पर बोझ बनकर पड़ा रह जाता है। अजीब बात है ना, जिस चीज को हम कैजुअली इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वही चीज नदियों का रास्ता रोकती है, समुद्रों को प्रदूषित करती है, जानवरों की जान लेती है और अब तो माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में हमारे शरीर तक पहुंच चुकी है। यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहानी का एक अच्छा हिस्सा भी है, पर वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

हम बात कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम के आसपास एक अच्छी बात है और वो है इसका सोल्यूशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कपड़े का बैग यूज़ करें, स्टील या कोई और मटेरियल की रीयूजेबल बॉटल, प्लास्टिक स्ट्रॉस को ना कहें और छोटी छोटी ऐसी ही कॉन्शियस चॉइसेस लेते रहें। बस इतनी सी बातें धरती को बहुत बड़ी राहत दे सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक फ्री लिविंग कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले समय के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और सच कहें तो प्रकृति हमसे परफेक्शन नहीं चाहती, बस थोड़ी सी समझदारी चाहती है। तो आइए सुविधा से थोड़ा ऊपर उठकर संवेदनशीलता को अपनी आदत बनाएं, प्लास्टिक फ्री लिविंग को केवल एक कैंपेन नहीं अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी तरक्की नहीं, हमारी समझदारी याद रखेंगी।

प्रिय श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के अंतर्गत 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा फॉरेस्ट गार्ड तथा जेल प्रहरी भर्ती के लिए 1679 पदों पर अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। इसी के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन भी आगामी महीनों में प्रस्तावित है। देश भर के स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। विस्तृत जानकारी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसी के साथ आपका दोस्त शाश्वत विष्णु रावत लेता है आपकी आज्ञा। सुनते रहिए युववाणी और जुड़े रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत से। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत दहलीज फिल्म से महेंद्र कपूर और भूपिंदर की आवाज़ में लिखा हसन कमाल ने, संगीत रवि का।

अभी आपने रंजना फिल्म का ये गीत राशिद और नीति मोहन के स्वर में सुना। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया यह गीत प्रेम रोग फिल्म से।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ, जिसे आपने सुना परिचय फिल्म से। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। शाम 6:40 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान आज तक और 6:45 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान प्रादेशिक समाचार दर्शन और रात 8 सुर्खियों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृषि जगत होगा शाम 7:20 पर और रात 10 होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:23 पर। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 5:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में कहा कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के लिए आज भोपाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक अभियान संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय ने आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में 2 के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की बैठक की मेजबानी करेगा। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और MPL 2026 का आयोजन 3 से इंदौर में होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10, महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: डंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह

0: पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी,
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: Hello children, how are you?
3: We are fine, sir.
4: I am fine.
5: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir.
7: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear. Looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajender Pal. Technical Coordinator, Buttilang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरण

0: वर्णविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
3: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
2: अच्छा।
3: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
3: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज गौहर,

0: पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ही जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोपाल यादव के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने गोपाल यादव के गाए लोकगीत सुने। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है मध्य प्रदेश में आम उत्पादन की बढ़ती संभावनाएं और मैंगो फेस्टिवल 2028। आलेख श्री अनिल वशिष्ठ, आप जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में भी विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान रखता है। फलों फूलों और सब्जियों के उत्पादन के माध्यम से देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। विशेष रूप से फल उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। भारत वर्ष में कुल लगभग 1176 लाख मेट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 102 लाख मेट्रिक टन उत्पादन मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। ये उपलब्धि प्रदेश के किसानों की मेहनत, अनुकूल जलवायु, राज्य सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है। फल उत्पादन की दृष्टि से यदि किसी एक फल की लोकप्रियता और आर्थिक महत्व की चर्चा की जाए तो आम का नाम सबसे पहले आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो प्रदेश में आम उत्पादन में लगभग 72,000 मेट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों विशेषकर आम उत्पादन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां आम उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अलग अलग किस्मों के आम का उत्पादन किसानों को बेहतर आय उपलब्ध करा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार द्वारा आम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 13 जून 2026 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैंगो फेस्टिवल 2026 अर्थात आम महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये आयोजन केवल एक प्रदर्शनी या उत्सव नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के आम उत्पादक किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद और विपणन का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। महोत्सव के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न किस्मों के आमों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष प्रदेश के प्रमुख जिलों आलीराजपुर, रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, अनूपपुर और नरसिंहपुर में लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में आम उत्पादन विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है। ये योजना किसानों को उद्यानिकी आधारित खेती की ओर प्रेरित करेगी और प्रदेश में आम उत्पादन का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। प्रदेश के

0: लिए गौरव का विषय यह भी है कि सुंदरजा आम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। रीवा जिले के प्रसिद्ध सुंदरजा आम को जीआई टैग मिलने से न केवल इसकी विशिष्टता को वैश्विक पहचान मिली है, बल्कि इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ और बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ी है। सुंदरजा आम अपनी मिठास, सुगंध और विशिष्ट स्वाद के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार की प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर नकदी फसलों, फल फूल और सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित करना है। उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनकी बाजार में मांग निरंतर बनी हुई है। उत्पादन से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आम जैसी फसलें किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम है। कृषि उद्यानिकी क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। आज आवश्यकता है इस बात की कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आम उत्पादन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यदि किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यात सुविधाओं और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाए तो मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आम उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। मैंगो फेस्टिवल 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। यह आयोजन न केवल प्रदेश की उद्यानिकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा बल्कि किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम आज कल में इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कडियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है नर्मदापुरम जिले से, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।
1: नर्मदापुरम जिले में अप्रैल माह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। 26 अप्रैल को सीजन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बी फॉल और अप्सरा फॉल जैसे झरनों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, शरीर को पूरी तरह ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी तथा तरल पदार्थ लेते रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां 2 चरणों में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से प्रारंभ किया गया है। 31 मई 2026 तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे।
2: इंदौर जिले में जनगणना 2027 के लिए प्रगणक अपने निर्धारित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ब्लॉक की पहचान और उसके बाद मकानों की गिनती कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं पारदर्शी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि एक एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डेटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया था। इसमें 13,778 मकानों की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनगणना 2027 की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिले के मुख्य प्रशिक्षक जनगणना आर के पांडे ने आकाशवाणी

0: को बताया।
1: भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ है। इंदौर जिले में कुल 41 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 19 और नगर निगम क्षेत्र में 22 हैं। और

0: ब्लॉक में एक एक प्रकरण प्रत्येक परिवार में जाकर के डिजिटल फॉर्म में उनसे 34 जानकारियां ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन करते जा रहे हैं। और इनके सुपरविजन के लिए प्रत्येक 6 प्रकरण के ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। अभी तक 2141 ब्लॉक पूरे जिले में हैं जिनमें 100% काम हो गया है। ये काम 30 मई तक होना है।
1: गौरतलब है कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक एवं वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम, आवास की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का भी विश्लेषण होगा, जिससे जिले की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकेगा। जनगणना के दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं खरगोन जिले का, जहां पर भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
3: खरगोन जिले में भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के करीब 350 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए। प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री HL आवासी।
4: गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए महामार्च से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे बेवरेजेस पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध एवं दूध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, मावा एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच संपूर्ण जिले में विशेष अभियान के तहत उक्त खाद्य पदार्थों के कुल 350 नमूने लिए जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जो खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर या अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर माननीय सक्षम न्यायालय में 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत पर भी विभाग के द्वारा तत्काल जांच कर नमूने लिए जाएंगे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले पर, जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय वार्डो में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जाँच निःशुल्क की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
5: मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डो में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिविर में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आम जन को क्षय रोग से होने वाले लक्षण और इसके बचाव की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पहुंच रहे लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ ही टीबी जैसी बीमारी के लक्षणों और निक्षय योजना के तहत मिलने वाली 1000 की मासिक आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। आयुष्मान आयोग शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी करीब 50 से अधिक बीमारियों की जांच, वहीं निःशुल्क दवाइयां वितरित कर बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से दीपक शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां की रामा तहसील में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता हरीश कुमार।
6: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFR के तहत ग्राम साड़ को सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम साड़ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वन संरक्षण, पारंपरिक सीमा और स्थानीय आवश्यकता पर चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और वन अधिकार से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव रखे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश कुमार भरसट ने आकाशवाणी को बताया कि
7: हमारा झाबुआ जिला का पूरा प्रशासन है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सभी अधिकारी, इसके अलावा हमारे जिले के सभी जो अधिकारी जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय है और ग्राम स्तरीय, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। गाँव चौपाल लगाने का यही उद्देश्य था कि प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी समस्या है हमने उनको बताने के लिए कहा और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनकी समस्या भी बताई और हमारे द्वारा जो भी अधिकारी है उन्होंने कुछ कुछ आने वाले समय में खाद से संबंधित हो,

0: हो या किसान की, क्योंकि ये किसान कल्याण वर्ष है, उसके तहत हमारे जो भी कृषि संबंधित उनको योजना के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी हमारी जो अपेक्षा है प्रशासन की कि लोगों को कैसे समरसता रहे, और जो वन अधिकार, जो सामुदायिक वन अधिकार उनको पत्र प्राप्त हुआ है इस गांव को, तो उनको आगे कैसी कार्य योजना बनानी है और कैसे वो अपने अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन जो अधिकार है उसके तहत कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा एक चौपाल रहा।
1: पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले में अपराध, दहेज, दारू और डीजे के बारे में बताया कि
2: जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, मैं, DFO साहब और पूरे सभी विभागों के अधिकारी एक जाजम पे इस गांव में बैठे थे। पब्लिक से एक संवाद बनाने का प्रयास किया गया, कनेक्ट किया गया, उनकी चीजों को भी बहुत गंभीरता से सुना और एक लोगों के द्वारा भी एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस शासन आपके लिए है। किंतु उस जिले में कोई बहुत वैसा क्राइम नहीं है, किंतु जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके चलते जो अपराध है उसके बारे में एक अवेयर करने का भी प्रयास था कि शराब हुआ, DJ हुआ, दहेज हुआ, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना आगे हम लोगों को आना चाहिए। उन सब चीजों से ही हम अपराध और बाकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में इनसे बात की, काफी लोगों ने सहयोग किया और आने वाले समय में हम लगातार ऐसा प्रयास करेंगे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रुख करते हैं जबलपुर जिले का, जहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी।
4: जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए जिले के 50,788 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां पर वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा की गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे।
5: कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने वन ग्राम आवलिया स्थित जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास केंद्र में किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं, 12वीं एवं RTI उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली और स्वरोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतिभागियों को भोजन, आवास और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह अचालिया ने बताया कि
6: आज के प्रति स्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता और व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों तथा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ स्वयं का कार्य भी प्रारंभ कर सके।
5: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है मंडला जिले से, जहाँ के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन 15 और 16 मई को किया गया। इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश शासन की मंत्री संपतिया उइके ने शिरकत की। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं।

0: हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे।
1: आदि उत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से आयोजित हो रहा आदि उत्सव जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा से आए गौंड एवं बैगा समाज के लोगों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। आदि उत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्सव के दौरान जनजाति लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, लोक गाथाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, चित्रकला और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनजाति प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह दुर्वे, भज्जू सिंह श्याम और उषा बागले सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला जिले से मैं शशांक चौबे।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और जिलों की समसामयिक खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जाँच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय

0: सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi held restricted and delegation level talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in several areas. In a joint press statement, Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वेलकम नॉर्वेज डिसीजन टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। Prime Minister Gahr Støre conveyed strong support for India's in the global fight against terrorism. The leaders also agreed to enhance cooperation in multilateral fora. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0, and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. Talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. A correspondent covering the Prime Minister's tour reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. The BJP has said that it is a matter of immense pride for every Indian that Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the Sweden's highest honour for a head of government, the Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross. Briefing reporters in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said that this recognition marks the 31st international honour bestowed upon Prime Minister Modi. He said this honour is not merely a recognition of Mr. Modi as an individual, but a symbol of establishing the potential and excellence of 140 crore Indians on the global stage. CBI has arrested 10 accused so far in NEET paper leak case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. In the last 24 hours, CBI has also conducted searches at 5 locations at various places and seized several incriminating documents, laptops and mobile phones. The investigation conducted so far has brought out the actual source of the leakage of chemistry.

0: and biology papers which were circulated before the exam. The Enforcement Directorate has arrested Aam Aadmi Party AAP leader Deepak Singla in an alleged bank fraud case. Earlier, the agency conducted searches in Delhi and Goa in the case against Singla and other hawala operators this morning. It is alleged that he is handling the hawala operations for the fund movement for the Aam Aadmi Party between Delhi and Goa and defrauded Oriental Bank of Commerce of more than 150 crore rupees. A high-level US industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the US nuclear industry, business stakeholders and officials associated with India-US cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. In IPL cricket, Chennai Super Kings won the toss and opted to bat against Sunrisers Hyderabad at the M.A. Chidambaram Stadium. The match will begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far, and remain firmly in the playoff race. And that is the end of this news bulletin.
1: Bharat aur Europe apne
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर?
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरी दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है।

0: और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैले। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस और युवक रेड क्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेड क्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक MOU बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस MOU का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितवई जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
3: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मित व्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप मितव्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
1: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के HR मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली CC रोड का आज भूमि पूजन किया।

नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी
3: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: आरबीआई कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनवे वारे सभी किसान भैया बहनन से मधुबंती बिन्ना की राम राम। भैया आरो ई टाइम पे तो देखो कैसी गर्मी पड़ रही और ततूरी तो देखो कि घर से बाहर निकलने को मन नहीं हो, चाहे घर होए चाहे बाहर होए। और हम जा कहें कि घर में चैन नहीं तो बाहर कैसे चैन हुई है, चाहे अपने आदमियों की बात कर ले, मैं घर के जो मनंक हैं उनकी बात कर ले, मैं चाहे अपने ढोर बछेरियों की बात कर ले, मैं सभी को ऐसा हलाकान मची पड़ी है ई टाइम पे कि कछु कहवे की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात जा कि अपन ठहरे खेती किसानी बारे, और खेती किसानी बारे भैया हरन को तो काम कभू खत्म ही नहीं हुए, चाहे घर घर में काम हुए चाहे खेत में काम हुए, बा कभू खत्म नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात जा है कि अपन चाहे कछु कर लेवे, अच्छो भी सोच लेवे कि हमें जे काम समय से पहले कर लेने हैं और इनमें हम गर्मी से बच जावे, चाहे जैसे फसल खेत से कट के आ गई तो उसके बाद जी सोचा कि भंडारण की बात कर ले मैं तो भाई समय पे हो जाए, हर चीज़ अच्छे से हो जाए, तो बात समय पे कछु नहीं हो पाए। गर्मी के मारे आदमी को ऐसा ई टाइम पे हलाकान मचो कि कछु कह नहीं सकें। और सबसे बड़ी बात जा है कि ई टाइम पे जब अपन को इतने से उतने कहूँ अंत गाँव जाने पड़ जाए तो बात सोई बड़ी मुश्किल की बात है। अब एक बार की हम आपको बात बता देवें कि अभी कछु दिन पहले की बात है कि हम अपने मौसिया जी के ते गए और मौसिया जी के रहो कछु कारज काम हतो सोने बुलाओ हम औरन के लाने, तो भैया हमारा पूरा घर भर गाओ उनके ते मौसिया जी के ते। और मौसिया जी बड़े अच्छे स्वभाव के तो हैं ही, और संगे संगे उनको एक एक बहुत अच्छी आदत है कि वह कोनो भी चीज़ को ऐसे नहीं कि कछु अपने काम की चीज़ नहीं है तो फेंक दई के इतने उतने डरी परी है, तो ऐसो नहीं, उनके ते हर चीज़ बड़ी संभाल के रखी जाते। जा हमने सुनी तो हती पर

बार जब हम गए तो हमने देखो कि मौसिया जी कहते हैं ऐसो लग रहा था कि एक छोटो मोटो उनने अपने घर ही में संग्रहालय सो बना के धर लो। उनके ते गए तो भैया ऐसे पुराने टाइम के उनके पास रुपया मतलब पैसा हाते सिक्का हाते जी में इकन्नी हती दुअन्नी हती चवन्नी हती पाँच पैसा दस पैसा और ना जाने कितनी तरह के प्रकारन के उनके पास सिक्का हते तांबे के सोई रहे। और भैया उनके पास हमने सिक्का देखो एक पहली बार हम तो पहली बार देखे आप और ने देखो ये तो बा आप और जानो कि वह सिक्का है तो एक गोल सो में छेद सोई है तो बीच में ऐसा लग रहा है जैसे छल्ला घाई हुए पर छल्ला नहीं वो सिक्का है तो भी पहले के टाइम पे चलते। और भैया उनके ते इतने तरह तरह के तो डाक टिकट हते वे हमारे मौसिया जी धरे थे अपने पास और उनने इतने संभार के भी डाक टिकट रखे छोटे से लेके बड़े तक के डाक टिकट और रुपया सोई धरे थे जौन पहले समय में चलती करंसी अपने ते बार रुपया सोई भी पुराने पुराने उनके पास एक एक के नोट दो दो के नोट और उसके बाद में और पहले टाइम पे चलते बड़े साइज के जितने बड़े बड़े नोट हते बस वही धरे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो जितने जाते और उन्हें अगर उतने कछु अच्छो मिलत है चाहे वे अंत देश का अंत शहर सोई जाए तो उतने की जो रुपया पैसा हो बेसोई संभार के धरत वो ऐसा नहीं कि खजाना जोड़ के धरे हुए कि भैया मुत के सारे रुपया पैसा हुए उनके पास हाँ मतलब ऐसे कह लो सबूती के लाने के हम उतने गए थे तो उतने ऐसे रुपया चलते कि ऐसा टिकट चलत तो डाक टिकट। और पहले के टाइम पर तो देखो आज के टाइम पर क्या होगा कि हर कछु डिजिटल होगा हम जा कहें हाथ में सबके पास मोबाइल है सबके पास बस लैपटॉप से कहा वो है और घरों घरों में कंप्यूटर सोई लगे सो हर चीज़ आसानी से अपन को मिल जाते दिख जाते। लेकिन वो टाइम पे पुराने समय की बात बताएं तो ऐसा कछु नहीं है तो रेल के टिकट भी चलते बड़े बड़े पुट्ठा के चलते तनक तनक से टिकट आते पर वे पुट्ठा गत्ता के बने रहते उन पर वे लिखे रहते काली स्याही से तो बे तक धरे थे। तो हमने मौसिया जी से कही कि जा बताओ कि आपके घर में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जे धरे हों आप तो जे काय खिलाने धरे तो बोले काय खिलाने आप देखो जी बच्चन खिलाने धरे हैं इनसे उनको ज्ञान बढ़ाते हैं उनके उनको अपनों जो पुरानो इतिहास है उसके बारे में पता चलते। अब हर कोई तो ऐसा नहीं कि वह अंत गाँव अंत देश में अपने संग्रहालय जो बड़े बड़े संग्रहालय बने हैं सरकारी संग्रहालय बने होते जाके देखने को मौका मिले जब कहूँ मौका मिलत है तो जाते हैं अपन और देखवे। लेकिन उनने घर ही में अपने एक छोटा सा संग्रहालय कह लो कि खजानो कह लो बस जोड़ के धरो है तो हम तो इतने खुश हो गए वह देख के कि हमने सोई ने देखे थे और तरह तरह के उन बर्तन भाड़ी रहे मतलब पुराने टाइम में चलते कांसे के तो पीतल के बरन बरन के लोटा लुटियाँ और भैया एक उनके तय सो बर्तन है तो हम जे कहे कि उमें डिब्बा डिब्बी सोई धरे उमें गिलास सोई धरो उमें कटोरिया सोई धरी। और सबसे बड़ी बात वह ऐसो बंद है तो कि एक कलसा खाई बंदू को मोह और भैया जब वह कलसा खोलत है तो ऐसा लोगों कि वहाँ में तो मुतके सारे बर्तन मतलब हम कहा बताएं चमचा से लेके गिलसिया से लेके सब कछु धरे थे वहाँ में। तो हमने कही मौसिया जी जा तो बड़ो अच्छो है तो बोले पुराने टाइम में जब अपन और सफ़र किलाने जाते तो बनावे किलाने आज के टाइम पर तो तुम इतने सारे बर्तन भाड़े लेके जाते हो पहले के टाइम पर जई ले जाते यही में थरिया है यही में कटोरी है यही में गिलास है यही में चम्मच है तो अब जी बर्तन भाड़े अपन को देख में नहीं मिले तो हम बा देख के इतने आश्चर्यचकित हो गए कि सोचो छोटे से घर में उनने छोटे से कमरा में जे कह लो कि बा उनको शौक है उनकी रुचि के हिसाब से उनने बस अब अपने पास संभाल के रखो उनने संभाल के रखो तो मोड़ी मोड़ा सोई देख रहे आवे जावे बारे सोई देखते हैं और सबको ज्ञान होते हैं। तो भैया जब ये तो हमने अपने मौसिया जी के तय की बात बता दी लेकिन जब आप और अपन और कहूँ बड़े बड़े संग्रहालय में जाते हैं तो हमने देखो कि चीज़ें तो अपन बहुत अच्छे से देखते हैं वो अपनी विरासत है धरोहर है उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। हमने देखो कि जात तो हैं लेकिन पता चला कहूँ ऐसे अलमारी बनी है कांच की बाँ में कोई चीज़ें धरी हैं तो अपन वह कांच को छू छू के देखें कि भैया हम पास से देख ले में एक कोई चीज़ खुली धरी है तो बाँ को अपन टटोर के देखते कि जब का है कैसी है तो ऐसा नहीं करने देखो इतने सालों पुरानी बरसों पुरानी चीज़ें उतें रखी हैं तो वो कछु ज्ञान के लाने धरी हुई हैं कि आवे वाली जो पीढ़ी है उनने तो जे कछु देखो नहीं तो वह देखें समझें और जानें तो यही के लाने भैया संग्रहालय बनाए जाते हैं। अब आप और सोच रहे हो कि बिन्ना जी का बातें कर भी बैठ गई तो भैया बातें कर भी नहीं बैठे जब जानकारी है देखो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तैसे जो हम कछु बता पर जानकारी ही हो। तो भैया आज है 18 मई और 18 मई के दिन अपने ते मनाओ जाते अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो
ई से हमने आप और उनके बताओ कि कछु भी चीज़ व्यर्थ में नहीं है और ना अपन को कछु फें

0: फेंकने ना, देखो जो फेंकत की चीज़ है बा फेंकत है, लेकिन जो संभार के धरवे की चीज़ है बा अपन संभार के रखें। जैसे अपन अपने डॉक्यूमेंट नहीं होत, जने अपन की मार्कशीटें होते हैं और भी कछु कागज पत्री रहते हैं जो संभाल भी के धरवे की चीज़ें, बस वही धरत है ना संभाल के, वही सी अपन बात कर रहे हैं। तो भैया देखो ये सब बातें तो हो गई, और भी हमारे पास मुद की सारी जानकारी है। देखो अपनी खेती बाड़ी में से फसल जोन कट के हैं, कटाई हो गई, गहाई हो गई, सब कछु होगा। अब है टीम यही टाइम पे है भंडारण को समय, और अपन ने अगर अच्छो भंडारण नहीं करो तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो ना अपनी साल भरे की मेहनत है ना बा माटी में मिल जाते, तो ऐसा तो होने नहीं चाहिए। कैसे हमने इतना खून पसीना बहा के अगर फसल करिए और उसको भंडारण अच्छो नहीं भाव तो कोई मतलब नहीं अपनी इतनी मेहनत करवे को। तो जब भंडारण अपन को कैसे करने हैं, कैसे क्या चीज़ें संभाल के रखने हैं, खासकर बीज भंडारण की बात जो हम कहें कि अपने जो अच्छे बीजों को अपन को भंडारण करने हैं वो कैसे करो जाते, जा की जानकारी आज अपने पास लेके आएंगे डॉक्टर सुब्रता शर्मा। और जी आज है भैया सोमवार को दिना, तो सोमवार के दिन अपने तैसे जाते कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक क्रम में जो अपन सुनवाते हैं भेंटवार्ता, वह आप भी सुनो और हम भी सुने कि जे अपनी डॉक्टर बहन जी हैं डॉक्टर सुब्रता शर्मा बहन जी, वे अपन को क्या जानकारी दे रही हैं कैसे अपन को बीज भंडारण करने, तो सुनते जी उमदा सी जानकारी बीज भंडारण पे।
1: बीजों का भंडारण एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्य होता है किसान भाइयों, और किसान भाइयों आज इस विषय में जानकारी देने के लिए कि बीज भंडारण हेतु उपयोगी सुझाव, डॉक्टर सुब्रता शर्मा मैडम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मैडम, बीज भंडारण की बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को ऐसे किन बातों का ध्यान रखते हुए बीजों का चयन करना चाहिए कि बीज भंडारण कर रहे हैं तो चयन किस हिसाब से करते हैं?
2: जी, बीज एक जीवित भ्रूणीय पौधा होता है जिसमें लगातार कार्य की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए अच्छी उत्पादन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि कृषक भाई उन्नत व उत्तम बीज का चयन करें, क्योंकि वो सिर्फ बीज पे उनकी पूरी फसल की उपज निर्भर करती है।
1: जी हाँ जी हाँ मैडम, उत्तम बीज की बात करी आपने तो ये कैसे होते हैं, कैसे पहचाने कि ये उत्तम बीज है?
2: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये बीज को हम उत्तम मानते हैं जिसमें कि जीवन क्षमता यानी कि जिसे हम वायबिलिटी बोलते हैं, अंकुरण व बीज ओज, ये सामान्य बीज की अपेक्षा अधिक हो, और बीज पकने से लेकर के फसल कटने के बाद अगर बीज को हम सही ढंग से परिसंस्करण नहीं करते हैं और सही ढंग से भंडारित नहीं करते हैं तो ये बीज में बहुत जल्दी क्षय होना आरम्भ हो जाता है और धीरे धीरे वो बीज का क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो जाती
1: मतलब
2: है।
1: मतलब बीज का क्षय का मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। जी हाँ, किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी हम बीज चयन कर रहे हैं तो उसमें जीवन क्षमता अंकुरण ओज का होना अति आवश्यक है, तभी उसकी हम कह सकते हैं कि ये उत्तम बीज है। मैडम अगर हम उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है तो इसका मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं?
2: खास तौर पे बीज क्षय तब होता है जब हम फसल कटाई गहाई व भंडारण के समय बीज की नमी व तापमान पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो बीज की जीवन क्षमता और ओज है इसको बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में बीज को फ्री जल, जिसको हम मुक्त जल बोलते हैं फ्री वाटर, उसकी आवश्यकता होती है, और अधिक नमी होगी अगर इसमें इससे ज्यादा बीज में तो ये बीज की आयु के लिए हानिकारक होती है।
1: जी हाँ, तो मतलब इसका बहुत ध्यान रखना हमारे किसान भाइयों को जरूरी है।
2: जी।
1: बीजों में से अगर नमी कितना होना चाहिए या जब हम भंडारण करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे किसानों को कैसे होती है कि बीजों की नमी इतनी होनी चाहिए, इसके विषय में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी दे दें।
2: जब हम भंडारण के लिए हम बीज का चयन करते हैं तो दलहनी और तैलीय बीज जो होते हैं इसमें जो नमी है वो 8-10% की नमी सबसे उत्तम होता है।
1: जी
2: और जो धान्य फसल है उसमें चूंकि उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो धान हो, तो उसमें 13% तक बीज की नमी चल जाता हो सकता है, तो फिर बीज में कोई क्षय नहीं होगा। पर इससे अधिक अगर नमी हो जाती है तो क्या होता है कि बीजों में फफूंद और कीट उसका प्रकोप अचानक से आक्रमण करना आसान हो जाता है, क्योंकि बीज का जो बाहरी उसकी जो त्वचा रहती है उससे धीरे से अंदर पहुंच जाती है, नमी के कारण वो ढीली हो जाती है।
1: जी हाँ।
2: और अगर ज्यादा कम भी हो तो भी हानिकारक होता है बीज, की नमी अगर कम हो, उसमें क्या होगा कि निरादरीकरण मतलब कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा बीज में।
1: जी हाँ जी हाँ।
2: और जैसे

0: खानों में भी अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें अस्पताल जाना पड़ता है, तो इसी तरह से बीजों में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और धीरे धीरे वो बीज की क्वालिटी क्षय होना शुरू हो जाती है।
1: जी हाँ, तो इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है कि दलहनी और जो तेल वाली फसलें होती हैं उनमें 8 से 10% तक नमी हो,
0: जी
1: और धान वाली फसलें जो हैं उसमें 10 से 13% तक,
0: जी
1: इसका ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई अगर खुद अपनी फसल के बीजों को रखना चाहते हैं तो उसमें नमी कैसे उपयुक्त है, ऐसा किस तरीके से वो पहचान सकते हैं?
0: अगर किसान सीड टेस्टिंग लैब में अपना सैंपल भेजते हैं, मतलब कि गुणवत्ता रखने के पूर्व अगर वो जांचना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी बीज की नमी का उन लोग बता देते कि इतनी नमी है, और अगर ज़्यादा होता है तो वो सुखाने की सलाह भी देते हैं। पर अगर बीज कभी कभी कभी किसान अपने खेत से ही सुखा करके रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि बीजों को डायरेक्ट तेज़ धूप में ना सुखाया जाए, हो सके तो आंशिक धूप आंशिक छांव रहे ऐसी जगह सुखाएं। और जब वो बीज उनको लगे कि अच्छी तरह से सूख गया है तो उसको उठा करके दांत से काट के देखें, तो अगर वो उसमें नमी इतनी हो कि मतलब वो भंडारित की जा सकती है, तो दांत से काटने पे एक आवाज आती
1: कट
0: है
1: की आवाज
0: कट
1: आती
0: की,
1: है जी
0: हाँ,
1: हाँ।
0: तो वो मतलब कि हाँ अब हमारा बीज अच्छी तरह से सूख चुका और इसको हम भंडारित कर सकते हैं।
1: मतलब ये बड़ी सरल भाषा में किसान भाई जब भी बीजों का भंडारण कर रहे हैं तो बीजों को दांत के बीच में दबाएं, अगर वो आसानी से दब रहा है तो उसमें नमी ज़्यादा है,
0: बिल्कुल
1: और अगर
0: बिल्कुल
1: हल्की कट की आवाज़ आ रही है तो भंडारण की स्थिति में है
0: स्थिति में
1: ये।
0: है,
1: मतलब बड़ी सरल भाषा में आपने बहुत अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात
0: बिल्कुल
1: हमारे किसान भाइयों को, एक व्यावहारिक ज्ञान है ये जो
0: जी
1: होना चाहिए किसान भाइयों में, बहुत अच्छी जानकारी है मैडम। बीज की नमी के अतिरिक्त तो और किस बात का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए?
0: ये दूसरा बहुत ही ये आवश्यक चीज है जिस पे ध्यान रखना जरूरी है, वो है भंडार का तापमान। तो बीज का जो जहाँ पे हम भंडारित कर रहे हैं वहाँ का तापमान जितना ठंडा रहेगा तो बीज की गुणवत्ता उतनी अधिक समय तक अच्छी बनी रहेगी।
1: जी हाँ, ये तो अच्छा है कि हमारे जो भंडारण गृह होते हैं उसमें कई बार देखा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना होता है, तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं इस विषय में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दें आप?
0: जी सबसे पहले तो जिस बात का ध्यान रखना कि वर्षा का पानी ना पहुंच पाए, और जब बारिश तेज होती है तो क्या होते हैं कि चूहे वगैरह अंदर घुस जाते हैं, तो इसीलिए जो भंडार गृह है उसको थोड़ी ऊंचाई पर बनाना चाहिए, मतलब कि पूरा भंडार गृह का समतल कम से कम 1 फीट ऊंची रहे जमीन
1: जी हाँ,
0: से, ताकि उसमें चूहे वगैरह ना घुस सके। और गोदाम को वायुरोधी करने के लिए ईंट के जोड़ों की चुनाई अच्छी तरह से कर देनी चाहिए, ताकि बाहर की नमी अंदर तक ना पहुंच सके। और जो पुराने बीज पहले रखे थे उनके कुछ रोगाणु कीटाणु कभी कभी रह जाते हैं भंडार गृह में, तो उससे पहले उसको नष्ट करने के लिए घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: और गोदाम में खिड़की और दरवाजे अधिक नहीं हों,
1: जी हाँ
0: क्योंकि ज्यादा होंगे तो वहां के दरारों में फिर कीटों का वास शुरू हो जाता
1: जी हाँ,
0: है।
1: ये महत्वपूर्ण सावधानियाँ हमारे किसान भाई मैडम ने बताया, इनको निश्चित रूप से ध्यान रखें, और इनका ध्यान रखते हुए आप भंडार गृह में अपने बीजों का भंडारण करें तो आपको कम से कम समस्याएं आएंगी। मैडम, भंडार गृह में नमी व तापमान कम रखने के कोई ऐसे उपाय होते हैं क्या जिससे वो अच्छी तरीके से भंडार गृह में उनका भंडारण किया जा सके?
0: जी, किसान चाहे तो अपने खुद ही अपने भंडार में, ये जो बहुत ही मामूली उपाय है जिनको करके तापक्रम और नमी थोड़ा कम रख सकते हैं। एक तो है कि भंडार गृह के बाहरी दीवारों को सफेद रंग से अगर वो पोत दे पुताई कर दे तो क्या होगा कि सूरज की ऊष्मा
1: कम,
0: का अवशोषण कम होगा,
1: जी हाँ,
0: और इस कारण गोदाम के अंदर उष्णता व आर्द्रता
1: सीमित बनी
0: सीमित
1: रहेगी। जी
0: बनी
1: हाँ,
0: रहेगी। और जो भंडार गृह का छत है उसको ढलान वाली बनाना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी जो है वो वहां पे जमा ना हो और वो
1: बह जाए।
0: ढलान से बह जाए। और भंडार गृह में कोई निरादरी कारक, ये जैसे कि सिलिका जल, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब चीजें वो बोरी में छोटी छोटी बोरियों में भर के लटका दे सकते,
1: जी हाँ,
0: और ये नमी सोख लेते भंडार गृह के अंदर का, फिर वो इसको सुखा करके फिर से दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं,
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: तो इससे भी अंदर नमी कम रहेगी।
1: जी हाँ, ये बड़े सरल उपाय हैं जिनके माध्यम से
0: जी
1: भंडार
0: जी
1: गृह में
0: जी
1: हमारे किसान भाई भंडारण का कार्य आसानी से कर
0: कर
1: सकते हैं।
0: सकते
1: मैडम, भंडार गृह में बीजों को कैसे भंडारित करना चाहिए, इसका कोई तरीका होगा?
0: जी, सबसे पहले ये जरूरी है कि जिसमें हम रख रहे हैं बीजों को तो वो आर्द्रता निरोधक पात्र हो, जैसे कोठी या पॉलिथिन लाइनिंग वाली बोरियां, HDPE बैग्स, इसमें बाहरी की नमी के साथ उसका असर ना हो सके, वो बाहरी नमी और अंदर की नमी के बीच में मतलब कोई दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो सके। और एक और तरीका है कि जो भी पात्र में आप रख रहे हैं उसमें

0: हवा कम से कम जाए। और एक तरह का चूर्ण है हैलोजिनीकरण जो हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि 2 ग्राम हैलोजिनीकरण चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज में मिला लें। तो ये हैलोजिनीकरण चूर्ण को बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों को सम मात्रा में मिला लेते हैं और 1 और 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें मिला डालें, तो उसमें वो गुणवत्ता काफी अधिक समय तक बनी रहती है।
1: जी हाँ, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भंडार गृह में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भी किसान भाई स्वयं भंडारण गृह में अपने जो बीज हैं उनका भंडारण कर सकते हैं और उनका बेहतर लाभ आने वाले सीजन में प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, आज बीज भंडारण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतने उपयोगी सुझाव हमारे किसान भाइयों को दिए, हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी प्रदान करी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा TV चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: हाँ तो भैया हरो, देखो हम आपके बता देवे कि कल ही हम मौसिया जी के तैसे आए हैं लौट के, और सबसे बड़ी बात जा कि जब कल आ रहे थे तो ततूरी की हम कह रहे हैं ना, तो कल हमें ऐसी ततूरी लगी कि आप और सोचे ही नहीं सकत, और कहूँ रुकबे की जगह नहीं हती। अब रुकबे की नहीं जगह हती तो भैया जब लौट रहे थे तो लौटत में हमें एक बरिया को पेड़ दिखो, अब बरिया को पेड़ दिखो तो हमने अपने भैया से कही कि तनक गाड़ी इतई रोक ले, और अपन इतई रोक के तनक मनक पानी वानी पी ले, जौन मौसिया ने 2-4 बोतलिया में छाछ सोई भर के धर दी बा तनक पी ले में, तो थोड़ी ठंडी लग जाए अपन को, ठंडी मतलब जुड़ान पड़ जावे कि भैया ऐसी गर्मी से अपन बच जावे। पर वो काहे को मान में बारो, वो कहते कि यहाँ आप तुम तो ऐसा करो कि सीधे घर ही चल के अपन जा गाड़ी रोकें। अब भैया फटफटिया से तो गए थे वो लेके हमें, हमने कही भैया 4 चक्का की गाड़ी से ले चल, से बोले यहाँ तनकई में तो है, पास में तो है, तो का 4 चक्का की गाड़ी निकाल लें। और वैसे ही हमें देखो गाड़ी में डलात को तेल के मारे भी इतने परेशान है कि का पतो कब कमी आ जावे। सो यही के चक्कर में फटफटिया से गए और ऐसे ही लौटे चले आए। सो गर्मी सोई लग गई हमके, और हमने कही अब गर्मी लगी है तो कछु हो जान दो भैया। तो हमारे जो सुग्रीव चक्रवर्ती भैया हैं बेसोई उमदा, सो गर्मी पर लोग गीत गाते हैं, हमने एक दो बेर सुनी है, सो आज हमने बुलात ले आए थे कि हम जा रहे हैं आज चौपाल है तो तुम आ जाइयो। सो भैया अभी संगई में नहीं, बे सवेरे से ही थे आके बैठ गए कि बिन्ना ने हमसे कही थी तो सवेरे से चले जावे, तो दिन में से बैठे थे, अब उनमें गावे को टाइम मिलो। सो हमने कहा भैया सुनाओ एक उमदा सो गर्मी को लोकगीत, तो सुनाते एक उमदा सो लोकगीत अपन।

हाँ तो भैया रो देखो, अब अपन ने कितो ओमदास जी सुग्रीव चक्रवर्ती भैया और उनके संगी साथियों ने ओमदास एक गर्मी को लोकगीत सुनवाओ की तबीयत एकदम खुश हो गई। और देखो बिल्कुल सांची सांची कही कि ततूरी बरस रही है ये टाइम पे। और एक बात हम आपके बता दे, में ये सब तो होता ही रहते, गर्मी आते सर्दी आते फिर उसके बाद बरसकारो फिर ठंडी, सब रीत लगी भैया। लेकिन एक बात हम आपके बता दे में कि आदमी को अपने स्वास्थ्य को ध्यान तो भैया खुद ही रखने होते, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हों। सब बच्चन को तो घर वाले रखते हैं लेकिन बड़े हैं, बड़ों को सो ही अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। अब भाई कछु दिना पहले की बात है कि हमारे एक मोहल्ला में एक भैया हैं, उनको जात भय का वो उनके संगे दुर्घटना घटित हो गई भैया। और ऐसी जगह दुर्घटना भाई, अच्छे भले तो हैं आप और जाना, सोचियो कि बिना कैसी बात कर रही हाँ हम बता रहे हैं आप और क्या कि दुर्घटना

आनन फानन में होते लेके भगे उन्हें, और उसके बाद में उन पर डॉक्टर ने कह दी कि इनके खून की कमी आ गई, तो इनके खून की बोतल लगने हैं, तो भैया उनके खून की बोतल चढ़ गई। अब कोई ने जा ना सोची कि खून की बोतल चढ़ तो गई, तो लेकिन ये कि जाँच भई है कि नहीं भई है। उस टाइम पर तो जी लगा था ना कि भैया अपनो आदमी जोन भर्ती हो वह कि जी को कछु उपचार की ज़रूरत है, बात छो भलो हो जाए। तो ऐसे ही भैया उनके खून की बिना जांच के खून चढ़ा दो गो। और जब बिना जांच के खून चढ़ो तो भैया जी कह लो कि बस संक्रमित हतो खून। अब काय से संक्रमित हतो जी हम आपको बताएं तनक देर में। अब भैया जब उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, लेकिन फिर उन्हें बड़े अस्पताल में लेके गए, होते से उन्हें बोल दे कि आप इन्हें बड़े अस्पताल ले जाओ। जब उन्हें बड़े अस्पताल लेके गए तब पता चलो कि भैया वह खून संक्रमित है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जा है कि वह आज भी बिल्कुल सही स्वस्थ है, इसे सही स्वस्थ है कि उन्हें जोन संक्रमण उनको भव हतो संक्रमण, तो भैया वह जोन खून चढ़ो हतो वह एड्स बीमारी से संक्रमित रहो हुई है, लेकिन जा जांच नहीं भई, तो ई के चक्कर में उनको चढ़ गा। आप और सोच रही हो कि बिन्ना जब उनके ऐसो खून चढ़ो तो उनके नहीं भई हुई है का? अरे भैया उनके ई से नहीं भव कि उन बे बड़े समझदार हैं भैया, पढ़े लिखे हैं, तो उनने कहा भाव कि आजकल तो देखो टीकाकरण होता ही है, और आजकल बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जिनके टीका लगत हैं, तो उनने समय रहते भाई पहले ही उनने जब उन्हें जानकारी हुई हुई है तो उनने अपने लाने जो एड्स को टीका होते बा लगवाओ है, तो वही के कारण आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर वे टीका नहीं लगवाए होते एड्स को, तो भैया आज के टाइम पर अगर उन्हें वह संक्रमित खून चढ़ा दो गौ थो जैसे, तो आज उनकी स्थिति ऐसी होती कि वो कोई दीन के नहीं रहते अगर टीकाकरण नहीं भाव हो। तो भैया हम तो यही कहें कि अगर कोनों को कोई भी दिक्कत होते है या कोनों भी परेशानी है, तो सबसे पहले जाके अपनी जांच बड़े अच्छे से कराओ चाहे। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देखो मेन कारण तो यही है कि संक्रमित खून से जो बीमारी फैलत है, और सबसे बड़ी बात कि और भी कई और साधन है जिनसे ये बीमारी फैलत है, तो अपन को बच के रहने और समझदारी से अपनों काम करने हैं और आगे बढ़ने हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक और बता देवें कि भैया देखो बीमारी कोई भी होए उनको अगर समय से उपचार होगा तो आदमी स्वस्थ हो जाते हैं, अगर समय से उपचार नहीं हो छुपा ले, बहुत से और हैं तो छुपाते हैं बतात नहीं है कि हमें क्या परेशानी हो रही, घर वालन से ही छुपाते हैं, तो फिर जब अपने पास समय ही नहीं बचो तो भैया डॉक्टर क्या करें। तो सबसे बड़ी बात समय रहे तो हम चेत जावे, समझ जावे, जागरूक हो जावे। हम तो हुई हुए संगे संगे अपने मोहल्ला पड़ोस के जो और लोग हैं उनको भी आपन और बताएं, तो हम ई बीमारी पे निजात पा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। तो भैया आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, तो अपन को ई बीमारी पे मतलब ई बीमारी से मुक्त होवे के लाने अपन को टीकाकरण करावो बहुत ज़रूरी है, और अस्पतालों में जी मुफ्त में टीका लगाते हैं, और ये के लाने एक उम्र सोई निर्धारित करी गई है कि आप और 19 साल से लेके 26 साल के बीच में ये टीकाकरण अपन करा सकते हैं भैया। तो चाहे ऐसा नहीं कि ये सभी को कराने हैं भैया औरन के नहीं, आप भाई बिन्ना हरे बेबी जाके करा सकते हैं, और आजकल तो महिलाओं के लाने भी कैंसर से संबंधित जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर की जो अपन बात कर रहे थे उनके भी टीकाकरण होते हैं। छोटी बच्चियों में जैसे भी 9 साल की ऊपर होते हैं उनके बाद में अपन बच्चियों को टीका लगवा सकते हैं और ये बीमारी से अपन निजात पा सकते हैं। तो भैया जैसे हमने आपको बताओ तो समझदारी के संगे आप और बिल्कुल हमारी बात पे अमल करो, और जो भी आपको सलाह लेने हो जानकारी लेने हो ये तो अपन अपने सरकारी अस्पतालों में जाके डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, और जो भी उम्दा वो आप और उनके विचार बताएं और सुझाव दें उन पे अपन अमल करो। भैया हम देखो अब बता रहे हैं आपको कि हम तो बहुत बोलबे बारे हैं और बोलते ही रहते हैं, और जो हमारे भैया आके बैठे हैं हमारा चढ़ार भैया, तो इनसे सुनते हैं उम्दा से लोकगीत।

हाँ तो भैया हरो देखो, अबे उमदा सो अपन ने एक पानी बचाओ के ऊपर लोकगीत सुनो जी गा रहे थे अपने हेमराज चढ़ार भैया और उनके संगी साथी। और हम आपके बताएं कि गर्मी के टाइम में भैया अपन को पानी को बिल्कुल बचा के रखने हैं, ऐसे आनन फानन में ऐसे नहीं कि खूब मुझ को पानी बाहर आए, और गर्मी की बात नहीं है पर हमेशा अपन को पानी को सहज के रखने का। ऐसी गर्मी के टाइम पे पानी की बड़ी किल्लत होते हैं, हम और उनके पास तो सुविधा है लेकिन और दूसरे अंत गाँव में देखो वहाँ पानी की कितनी किल्लत है कि एक एक बूंद के लाने, एक घड़ा पानी लेवे के लाने उन्हें कोसों दूर चल के जाने पड़ा थे तब कहूँ जाके भाई एक मटका पानी लेके आ पाते भाई बिना हारे। तो हमारे पास सुविधा है भैया, इसे सुविधा है कि अपने पास नर्मदा मैया हैं और पानी की अपन को बिल्कुल किल्लत नहीं है, तो अपन उनको मोल नहीं पहचान रहे। लेकिन जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ आदमियों को जो मालूम है कि पानी कैसे भी पा पा रहे हैं और एक एक बूंद की उन्हें कीमत मालूम है। तो यही से हमने आज जो लोकगीत आप और उनको सुनवाओ के आप और समझो कि हमें पानी को कैसे बचाने हैं भैया। अब हो रही है हमारी चलवे की बेरा, कैसे हमारे इतने चौपाल में जो घड़ी लगी है वह कह रही है कि बिन्ना चलो इतने से। तो भैया सभी कार्यक्रम सुन भी वारे भैया बिन्ना हरण के मधुबंती बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की 4वें चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले 2 देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा

0: है उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खास तौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली का जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडारण होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं,
1: जी
0: और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी,
1: जी
0: उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोड मैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन
1: जी
0: एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खास तौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो हैं वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खास तौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं,
1: जी
0: और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खास तौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी बल दिया है। और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
0: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है, कोर, वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं। इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया, और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में, और उसके बाद यूके के साथ किया, और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर लिए हैं। तो ये खास तौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था, वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी।
1: जी
0: तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खास तौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खास तौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है,
1: जी
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो उस और भी संभावनाएं उनको लगती हैं कि भारत की जो मार्केट है, खास तौर से जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ

0: है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में। और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और
1: जी
0: वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां पे।
1: जी जी जी प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है, काफी लंबा। लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है। और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की पांच देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से, पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है, और बिजनेस के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो तीन देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो यूरोप को अच्छी तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत CID फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत ब्रह्मचारी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथी के स्वर में, हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने कुमार सानू का गाया ये गीत सर फिल्म से सुना। लीजिए अब सुनिए कुर्बानी फिल्म का ये गीत कंचर, मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में।

अभी आपने फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं

0: के 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल
1: एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को

0: रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up two inquiry commissions to probe corruption.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2371-18, 0111-2371-17, 0111-2371-16 और 0111-2331-4444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289-094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी,
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें कित, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी।

0: तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त तो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
2: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे थे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना ज़रूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
3: जी नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
3: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
3: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं, पहली है कि

0: जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज़ पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
2: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
2: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
2: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है, और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
2: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करवानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना

0: ना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है, ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा वीर ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
2: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
2: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पर डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं। तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
4: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
4: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी

0: पर देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी कि स्लम और जेजे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
1: जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
1: जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ रुशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाए जाता है, तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहां पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो

0: जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी
1: जी। और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज़ होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गाँव में स्कूल बनाने हैं या किस गाँव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत प्रस्तुत है अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग चंद्रकौंस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग चंद्रकौन सुना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का आगाज इज्जत फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे सुनने फरमाइश लिख भेजी है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद भाई ने। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर, श्रीमती सरिता और प्रिंस, साथ ही आकर हाइट्स बहादुर नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि ने। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राशि और श्रीमती शीतल। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर ने। बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग ने। साथ ही जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश, हेमंत, नोनीलाल साहू और आरती, साथ ममता और गोमती ने। तो आइए सुनते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत आपकी फरमाइश पर।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले के स्वर में उमराव जान फिल्म से, जिसे सुनने पत्र लेख भेजा है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश, रेखा, तुषार, किशु, आनंद और अभय ने। मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिनारे, जगदीश सिंह, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिराने ने। साथ ही बोर खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप और दीक्षा ने। ग्राम पिंडरई जिला मंडला से कबीर जैन, कमला प्रसाद, संजय जैन, कृपाल पटेल, वरुण और सुमत जैन ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और मेहराज जहां ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा ने। ग्राम बगबुड़बा पथरिया से नरेन, नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रणामिका और उत्कर्ष ने। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमल और वीरेंद्र व्रज ने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनने पसंद किया है। सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा ने। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल ने। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर, राजेश और शुभांग ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना रिजवान, इमरान आलम, शबाना चांदनी। साथ ही सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील और फिरोज आलम ने। पुणे से पंकज आर्या, बीटी वड़ोदे और चंद्रप्रभा ने। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कांसगढ़ से एम असलम सैफी, जबुनिशा अकरम और आबाद ने। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा, प्रियंका, पूजा, लिल्लू, रितु और ऋषभ सिंह ने। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम और वलीउल्लाह ने। राजनांदगांव से याकूब, यूसुफ, इमरान और इरफान ने। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय और श्रीमती रोशनी, साथ ही प्रांजल राय ने। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हीरो फिल्म से रेशमा की आवाज़ में, जिसे सुनने हमें खत लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और शाइना ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मास्टर मनीष ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बट्टा परिवार, मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा ने। राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल ने।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा

0: स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।